0: ইমানপুৰে শ্ৰোতাসকলে বন্দনা অনুষ্ঠানত পূৰ্ণিমা গোস্বামী আৰু সংগীসকলৰ কণ্ঠত নাম ঘোষা, নিকুঞ্জ মহন্তৰ কণ্ঠত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত বৰগীত, বীৰেম্বৰ আৰু সংগীসকলৰ কণ্ঠত দেহ বিচাৰৰ গীত, বঞ্জিত দাসৰ কণ্ঠত লোকগীত আৰু সুস্মিতা ভৰদ্বাজৰ কণ্ঠত ভজন শুনিলে।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत

0: कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold bilateral meeting with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues, including issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the US will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio shared US's perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. He called India a vital partner to the United States. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing company Jeff Shockey in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, skilling supply chains, innovation and growing India's role as a trusted global manufacturing and engineering hub. The government has published draft rules under the VVG Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme Swasthya Sathi will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendra in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts as well as a new AIIMS for North Bengal have also been sent to the central government. In Maharashtra, a 1500-page charge sheet has been filed before the court at Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to SIT Chief Sandeep Mitke, the charge sheet was filed yesterday against four accused, Mateen Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tawseef Attar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. US President Donald Trump said that a deal with Iran, including opening the Strait of Hormuz, has been largely negotiated after calls with Israel and other allies in the region. Announcing progress on his Truth Social platform, Mr. Trump said final aspects and details of the deal are being discussed and will be announced shortly. President Trump said that he had spoken with leaders from Saudi Arabia, UAE, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain along with Israel. Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baqai earlier told state television that the US and Iranian positions had been converging in the last week but warned that did not mean agreements would be reached on key issues. In IPL cricket, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow last night. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. And that is the end of this news bulletin.
2: এলাকাপন গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অনুষ্ঠান পৰিস্থিতি প্ৰথমে শুনক আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে। পুৱা 6:15 দীপংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কণ্ঠত ভজন। পুৱা 6:20 আৰু নিশা 8:15 পাপৰি দাসৰ কণ্ঠত লোকগীত। 4:00 পুৰণি হিন্দী ছবিৰ গীতৰ অনুষ্ঠান মধুবন। 7:15 আৰু 8:40 আধুনিক গীত।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
4: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए।

0: इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
6: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी

0: घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100 meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
4: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
3: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defense, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared US perspective on various regional and global issues including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio called India a vital partner to the United States. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President, Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing Company, Jeff Shockey, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, skilling, supply chains, innovation and growing India's role as a trusted global manufacturing and engineering hub. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister JP Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme Swasthya Sathi will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The memorandum of understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendras in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts as well as a new AIIMS for North Bengal have also been sent to the central government. In Maharashtra, a 1,500-page charge sheet has been filed by the state special investigation team before a court in Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to SIT Chief Sandeep Mitke, the charge sheet was filed yesterday against four accused, Martin Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tosif Athar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. Police said the first case in connection with the matter was registered at the Deolali Camp Police Station on the 25th of March. Officials further stated that 2 cases have been registered against Nida Khan, while 6 to 9 cases each have been registered against the other accused. Health and Family Welfare Minister JP Nadda has said that along with healthcare infrastructure, training of health experts and medical professionals is equally important. He made these remarks while addressing the 23rd convocation ceremony of the National Board of Examinations in Medical Sciences in New Delhi yesterday. Mr. Nadda emphasized that doctors serve as the software of the healthcare system, while infrastructure and other facilities function as the hardware for the nation.
5: We as policy makers give you infrastructure, but that is only going to remain as a hardware. The software is the doctor. The software are the people who are working in the field of health. I'm also happy to note that today we have started 11 new courses. I really congratulate NBEABS for this initiative that they have taken.
3: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on AIR app. The government has published draft rules under the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. Our correspondent has the details.
0: The Viksit Bharat G. Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. The ministry said that the draft rules, including transitional provisions rules, national level steering committee rules, Central Gramin Rojgar Guarantee Council rules, administrative expenses rules and grievance redressal rules have been placed in the public domain for consultation. The new act places strong emphasis on timely, transparent and accountable wage payments. The act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The VBG Ramji Act 2025 was notified on the 11th of this month for commencement across all the states and union territories with effect from 1st of July this year. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
3: US President Donald Trump said that a deal with Iran, including opening the Strait of Hormuz, has been largely negotiated after calls with Israel and other allies in the region. Announcing progress on his Truth Social platform, Trump said final aspects and details of the deal are being discussed and will be announced shortly. President Trump said he had spoken with leaders from Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain, along with Israel. Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai earlier told state television that the US and Iranian positions had been converging in the last week, but warned it did not mean agreements would be reached on key issues, and accused the Americans of contradictory statements. A ceasefire in Iran was agreed on.

0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা
1: 111 পোস্ট বক্স নম্বর 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया था फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को प्रेरित किया कि हम वन्य जीवों के बारे में जाने, इन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में जाने। तो आइए हम आपको सुनवा

0: रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का उल्लेख किया है।
1: साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती हैं। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूं। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहां की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहां आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसे ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी, ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है।
0: प्रधानमंत्री जी के इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए जानते हैं कि इन वन्य जीवों की, इन पशु पक्षियों की जीवन शैली कैसी होती है और इनके संरक्षण के लिए क्या विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं एक परिचर्चा। हमारे विशेषज्ञ हैं श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग गुजरात राज्य से, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक, कच्छ ईस्ट डिवीजन, वन विभाग गुजरात राज्य। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी।
2: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2026 मन की बात में गुजरात, कच्छ और खास करके उन्होंने फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगोस और साथ ही में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको यहाँ गुजरात में घोराट के नाम से जाना जाता है, वो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जिक्र किया था, उल्लेख किया था। आज उसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित है और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी उपस्थित है। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
3: नमस्कार श्रोता मित्रों,
2: डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने मन की बात में फ्लेमिंगो सिटी का जिक्र किया, साथ ही में फ्लेमिंगोस के बारे में भी बताया। तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में फ्लेमिंगोस को लाखा जी के बाराती ऐसा शब्द से नवाजा था, तो ये लाखा जी के बाराती क्या है सर?
3: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कच्छ प्रदेश प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो, जिसको सुरखाब भी हम लोग कहते हैं, आते हैं हर वर्ष और यहीं पे अपना प्रजनन करते हैं। वहाँ पे एक पूरा जो है अंडा देके बच्चे पैदा करके और बच्चे बड़े होने तक कच्छ में रहते हैं। और जब ये सुरखाब मीन्स फ्लेमिंगो जब ये कच्छ के रण में जब आते हैं तो वो पूरा कच्छ की धरती एकदम गुलाबी और सफेद रंग से भर जाती है। तो उसी को देखते हुए जो हमारे यहाँ के जो भरवाड़ लोग हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी एक जो ड्रेस होती है वो व्हाइट कलर की ड्रेस होती है और उसमें जब उन बारात के टाइम में, शादी ब्याह के टाइम में जब वो गुलाल वगैरह छिड़कते हैं तो पूरा गुलाबी और व्हाइट का एक कम्बिनेशन होता है। उस कम्बिनेशन को देखते हुए यहाँ इनको लाखा जी के बाराती कहकर भी बुलाया जाता है।
2: ये तो बहुत खूबसूरत बात है, फ्लेमिंगोस को यहाँ गुजरात में लाखा जी के बाराती के नाम से भी नवाजा जाता है। डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि ये जो सुरखाब फ्लेमिंगोस की आपने बात बताई, तो गुजरात के सिर्फ ये कच्छ जिला में ही आते
3: हैं? नहीं, एक्चुअली जैसे हम जानते हैं कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो मध्य एशिया का पूरा फ्लाईवे है, तो प्रवासी पक्षी पूरे साइबेरिया और रशिया और इधर से पूरे मतलब सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेटरी रूट का एक ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है और पूरा जो एक अनुकूल वातावरण भी कच्छ के पूरे रण क्षेत्र में रहता है। और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि बहुत पक्षीविद भी यहाँ आते हैं, ऐसे डॉक्टर सलीम अली भी यहाँ बहुत टाइम पे तक रहे और अभी भी सर्दी के टाइम में जब प्रवासी पक्षी और ये सब रहते हैं तो पूरे कंट्री से, पूरे देश से बहुत सारे पक्षीविद और जो जिनको बर्डिंग में रुचि रहती है वो यहाँ आते हैं। तो ये एक इनका एक टेम्परेरी रुकने का एक स्थल है कच्छ का रण, उसमें ऐसी अनुकूल परिस्थितियां है, हैबिटेट ऐसा है, तो काफी टाइम तक यहाँ रहते हैं और खास करके जब ये फ्लेमिंगो आते हैं तो उनको ब्रीडिंग के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध है जो पूरे दक्षिण एशिया में कहीं नहीं है। वो यहाँ पे ऐसा एक पूरा ब्रीडिंग ग्राउंड है और यहीं आके ये ब्रीडिंग करते हैं और ये पूरा जो माइग्रेटरी रूट है वो हिंद महासागर तक जाता है, उसमें देश के अन्य भागों में भी ये जाते हैं पर बहुत ज्यादा समय जो कच्छ के रण में ये रहते हैं और गुजरात के अन्य भागों में भी, ये जैसे नड़ा बेट का विस्तार है उसमें रहते हैं, फिर लिटिल रन ऑफ कच्छ जो कच्छ का छोटा जो रन है उसमें भी रहते हैं, फिर जामनगर के विस्तार में रहते हैं, पोरबंदर के विस्तार में जाते हैं, नल सरोवर में जाते हैं। तो अपने यहाँ पे गुजरात में खूब सारी वेटलैंड्स हैं और जो जो वेटलैंड्स में अनुकूल वातावरण इनको रहता है वो सभी में ये समय समय पर जाते हैं। तो कुछ समय कच्छ में रहेंगे, कुछ दूसरे भागों में जाएंगे, देन अपने माइग्रेटरी रूट के हिसाब से आगे जाते रहते हैं एंड देन जब रिटर्न होते हैं तो भी उनका वही सेम रूट रहता है।
2: आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया, कच्छ के भाग में ये विशेष करके आते हैं फ्लेमिंगोस, माइग्रेटरी बर्ड्स। कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: डॉक्टर जयपाल सिंह का कोई पर्टिकुलर सीजन रहता है इनके यहाँ कच्छ में और गुजरात के अन्य भाग में जो माइग्रेटरी बर्ड्स रुकते हैं, खास करके फ्लेमिंगोस?
1: हाँ, ये बड़ा एक स्पेसिफिक सीजन रहता है यहाँ। जैसे अभी हम लोग देखेंगे गर्मी की ऋतु में यहाँ पे पूरा रण जो है वो सूखा होता है, उसमें एक सोल्ट पेन जैसा रहता है पूरा, और जैसे ही बारिश होती है तो वो पूरा रण जो है एक पानी से भर जाता है, जो छिछरा पानी होता है, बहुत गहरा पानी नहीं रहता है, और वो छिछरा पानी जो है वो इसके फ्लेमिंगो के रुकने के लिए खूब अनुकूल है, और उसके ब्रीडिंग के लिए आसपास में जो मिट्टी के कुछ टीले वगैरह होते हैं और एक ऊपर का जो भाग है वो बहुत अनुकूल होता है, इसलिए जो है ये इस एरिया में आके रुकते हैं। और खूब बड़ा प्रदेश जो इनको मिल जाता है, बड़ा क्षेत्र मिल जाता है जिसमें अनडिस्टर्ब, मीन्स वहां पे कोई दूसरे व्यवधान नहीं है, कोई दूसरी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई घर और गांव नहीं है, ऐसा एक बड़ा सुंदर वातावरण का निर्माण यहाँ पे रहता है, तो उस वजह से ये यहाँ के रुकते हैं।
0: तो डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने जैसे बताया कि उसको एक बहुत सुंदर वातावरण मिलता है, तो ये जो इनका नेस्टिंग ग्राउंड है वो मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है?
1: ये तो ऐसे कहेंगे तो हम लोग जैसे कि ये तो हजारों हेक्टेयर विस्तार में है पूरा जो नेस्टिंग ग्राउंड और जहाँ आके रुकते हैं, और जो मतलब सैकड़ों हेक्टेयर विस्तार ऐसा है जिसमें ये आके अंडे देते हैं, और जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके बाद इनका आना शुरू हो जाता है जुलाई अगस्त से, फिर अपना अंडा देते हैं, फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, और देन ये फिर जो है आगे माइग्रेट करना शुरू करते हैं अलग अलग जगह।
0: जैसे कि आपने बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो मतलब इनका माइग्रेशन रूट कितना रहता है?
1: माइग्रेशन रूट तो इनका हजारों किलोमीटर होता है, जैसे साइबेरिया से आते हैं और पूरे जो है अपने हिंद महासागर के क्षेत्र तक जाते हैं, इवन चिल्का लेक और इस एरिया तक भी ये जाते हैं, और पूरे साउथ इंडिया में भी इनका विस्तरण रहता है, तो ये पूरा एक माइग्रेटरी रूट, काफी बड़ा इनका माइग्रेटरी रूट है।
0: श्रोताओं, हमारे साथ साथ आकाशवाणी स्टूडियोज में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित हैं। आयुष जी, आप बताएंगे कि कच्छ में कौन कौन से लोकेशन में फ्लेमिंगोस सुरखाब है वो पाए जाते हैं, पॉपुलेशन उसकी पाई जाती है?
2: नमस्ते श्वेता मित्रों, कच्छ एक अनुकूल प्रदेश है फ्लेमिंगो के लिए, एंड जैसा साहब ने बताया भी तो यहाँ काफी विस्तृत विस्तार में ये मिलते हैं, बट जो अभी जो मेन ट्रेडिशनल एरिया की अगर हम बात करें तो एक फ्लेमिंगो सिटी करके जगह है जिसको अंडा बेट के नाम से भी कहते हैं, उसे पिंक सिटी भी कहते हैं, एंड ये डिस्कवर किया गया था सन 1886 में, उस समय के जो महाराजा थे उस टाइम पे उन्होंने वो डिस्कवर किया था
0: कच्छ के महाराओं ने
2: जी, फिर महाराव खेंगा III इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, एंड डॉक्टर सलीम अली साहब ने फिर 40 और 50 के दशक में यहाँ पे काफी भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि ये एक नायाब जगह है फ्लेमिंगो के लिए। उसके अलावा अभी हाल में कूडा करके एक जगह है, वहां पर इनका काफी डिपार्टमेंट ने भी इंटरवेंशन किया जिसकी वजह से वहां सक्सेसफुल इनका प्रजनन होता है, जिसकी वजह से वहां पे भी असंख्य मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट प्रवासियों के बारे में मैं बात करूं तो जब हम रोड टू हेवन से प्रसार करते हैं तो उसके दोनों तरफ फ्लेमिंगो जो मौसम होता है तो देखने को मिलते हैं।
0: सबसे पहले तो श्रोता को हम बताएंगे कि ये रोड टू हेवन क्या है।
2: जी, रोड टू हेवन हमारा खावड़ा वाले एरिया से जो ढोलावीरा को कनेक्ट करता हुआ एक रोड है जिसे कहते हैं रोड टू हेवन, या फिर कह सकते हैं रोड ऑफ हेवन, इसके जैसे नाम से ही प्रस्तुत होता है, तो ये कहते हैं कि जन्नत की सैर आप कर रहे हैं। ये इसका महत्व इसीलिए है कि आप देखिए जिस समय पानी सूखा हुआ होता है तो नमक की एक सफेद चादर होती है, आपको लगेगा जैसे आप आकाश में विचर रहे हैं। जब पानी भरा होता है तो यहाँ पे विभिन्न माइग्रेटरी बर्ड जिसमें मुख्यतः आपका फ्लेमिंगो सुरखाब वो होता है, तो सफेद और गुलाबी रंग से वो पूरा का पूरा ढक जाता है, तो ये देखने में क्योंकि इतना बेहतरीन लगता है, इतना मोहक लगता है, इसीलिए इस रोड से प्रसार करते समय लोगों से कहते हैं कि रोड टू हेवन है।
0: और साथ में हम ये भी बता दें कि ये रोड टू हेवन है वो अभी अभी ही मतलब पिछले 4-5 साल से ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, जिसके दोनों साइड समंदर का पानी भरा हुआ रहता है, और जैसे कि आयुष वर्मा जी ने बताया तो जब आप ट्रायल करते हैं धोलावीरा से खावड़ा तो ये आपको लगता है कि इट्स ए रोड ऑफ हेवन। आयुष जी, आपने ये बताया तो हम श्रोता मित्रों को साथ में ये भी बताएं, एक बार जो उसका फ्लेमिंगोज है उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो सकता है?
2: जी, अगर मैं कच्छ की खाली बात करूं तो पिछले 5 वर्ष में जो हमारा एक अनुमान है वो ये है कि 3 से 4 गुना फ्लेमिंगो की संख्या बढ़ गई है, एंड हाल में ये संख्या अंदाजित 3 से 4 लाख, हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी इसको कह सकते हैं। यही संख्या जस्ट 2020 में 1 लाख के आसपास थी। और ये भी गौरतलब है कि जब ये फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं तो दोनों ग्रेटर फ्लेमिंगो एज वेल एज लेसर फ्लेमिंगो दोनों यहाँ पर आते हैं।
0: अच्छा आयुष जी, तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगोस और लेसर फ्लेमिंगोस, इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, तफावत क्या है?
2: जी, तो आपको अगर मैं फिजिकल डिफरेंसेस से बताऊं तो सर्वप्रथम तो जैसे ग्रेटर और लेसर है तो साइज में फर्क आपको दिखेगा। जनरली जो एक एडल्ट ग्रेटर फ्लेमिंगो है उसकी हाइट होती है 110 से लेकर 150 सेंटीमीटर एवरेज, जबकि हमारा जो लेसर फ्लेमिंगो होता है वो 70 से लेकर 95 सेंटीमीटर तक का होता है। तो एक तो साइज में डिफरेंस होता है, दूसरा लेसर फ्लेमिंगो जो है आपका वो काफी गुलाबी दिखेगा एज कम्पेयर टू ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो भी गुलाबी है लेकिन वो सफेद और ग्रे कलर का ज्यादा है। इनफैक्ट ये भी एक मजेदार बात है कि ये उनका बॉडीली अडेप्टेशन है। कैसे? एक ये जो हमने बात करी कि रण क्यों सूटेबल है, तो जैसा हॉफ साहब ने बताया यहाँ पर शैलो वाटर तो है, शैलो वाटर की वजह से क्या होता है एल्गे क्रस्टेशियंस डायटम्स और ये उनकी मेन खुराक बनती है फ्लेमिंगोज की। जो हमारे लेसर फ्लेमिंगोज होते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसको कंज्यूम करने की वजह से इनका जो कलर है वो गुलाबी आता है। जबकि जो हमारे ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं वो वेडर्स होते हैं, यानी वो पानी के थोड़ा सा अंदर सतह से जाके उनकी डाइट रहती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा वो क्रस्टेशियंस भी कंज्यूम करते हैं, बट जैसा मैंने साइंटिफिकली बताया कि उनका जो कोट का कलर है गुलाबी वो ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से आता है। तो लेसर फ्लेमिंगो इसको ज्यादा कंज्यूम करती है और ग्रेटर फ्लेमिंगो इसको कम कंज्यूम करती है। तो आप देखिए प्रकृति में कैसे एक वातावरण से हमारी पूरी मतलब हमारी तो वही साथ साथ पक्षियों की भी एक पूरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं।
0: मतलब सर ये तो हम बोल सकते हैं कि ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है जिसे

0: लेसर फ्लेमिंगोस और ग्रेटर फ्लेमिंगोस है, उसका एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग रहता है। डॉक्टर जयपाल सिंह, ये जो बताई फ्लेमिंगोस सुरखाप की संख्या, तो ये सुरखाप की संख्या उसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन काउंट के पद्धति कौन कौन सी रहती है?
1: ये जैसे फ्लेमिंगो को जो बर्ड सेंसस का भाग हम लोग मानते हैं, और वो मोस्टली जो है डायरेक्ट काउंटिंग होता है, उसमें काफी सारे इक्विपमेंट भी हम लोग यूज करते हैं, और उसमें बहुत सारे जो पक्षीविद हैं उनको हम लोग साथ में रखते हैं, साथ में बहुत कुछ एनजीओज रहते हैं, कुछ हमारे बर्डर्स रहते हैं जो इसका मतलब कंटिन्यूअसली हमारे कॉन्टेक्ट में रहते हैं, उनको साथ में रख के हम उसका डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं। पर जैसा कि हम देखें कि एक एक को काउंट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, बट उसको हम जैसे इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसके कुछ सैंपल करके और उनको देन मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो अंदाजित उसकी जो संख्या है उसका हम लोगों को पता चल जाता है।
0: श्रोताओ, फ्लेमिंगो सुरखाप के विशेष जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें डॉक्टर जयपाल सिंह आप अपनी पसंदगी का एक गीत भी बताइए।
1: जैसे रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये एक बड़ा सुंदर गीत है।
0: बिल्कुल, प्रस्तुत है स्वतः आपके लिए डॉक्टर जयपाल सिंह की पसंदगी का यह गीत।

0: क्रॉसबॉक्स नंबर 111 इस कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुरखा फ्लैमिंगोस की पॉपुलेशन एस्टिमेशन होती है तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं गवर्नमेंट के अलावा?
1: जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टाफ तो उसमें रहता है, पर उसमें जो काफी सारे पक्षीविद हैं, काफी जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वो सब, और बहुत सारे बर्डर्स हमारे गुजरात में खास करके बहुत बड़ा बर्डिंग कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो जिनको काफी रुचि रहती है पूरी बर्ड लाइफ में, तो वो साथ में रह के हम लोग एक अपना प्लान करते हैं, फिर उन सबको इनवाइट करते हैं, उनको सबके साथ रह के वो एक जो इनकी गिनती पक्षियों की है उसका कार्य हम लोग करते हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, ये फ्लेमिंगोस का पॉपुलेशन सेंसस हर साल होता है या कोई पीरियडिकली रहता है?
1: वैसे तो हम लोग हर चार साल में एक बर्ड सेंसस का आयोजन करते हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में जो विविधताएं होती हैं तो स्टाफ अपनी तरफ से भी हर साल वो पक्षी गिनती करने का कार्य करता है। जैसे कि नड़ावेट विस्तार है, उसमें अलग से अपना स्टाफ जो है वो एक अपना गिनती का कार्यक्रम रख लेता है, इसी तरह से नल सरोवर में रख लेता है, तो उससे पक्षियों की संख्या का अंदाजा हम लोगों को आता रहता है और डिफरेंट जो वैरायटी के बर्ड्स हैं उनकी भी संख्या का पता चलता रहता है। तो कभी कभी जैसे नल सरोवर जैसे विस्तार में कुछ अन्य विलक्षण पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं जो जनरली माइग्रेट करके आए होंगे, पहले नहीं देखे गए हैं, बट कभी पिछले साल में भी ऐसे एक दो पक्षी देखे गए थे और फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वही सेम पक्षी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
0: आयुष जी, जैसे कि आपने बताया कि जो कच्छ के महाराव थे महाराजा खेंगार जी, उन्होंने विश्व के समक्ष ये फ्लेमिंगो सिटी अंडाबेट का उजागर किया, ऐसे ही फिर बाद में सलीम अली जी ने भी जिक्र किया फ्लेमिंगोस का, तो मतलब जो एक ये पूरा नेस्टिंग कॉलोनी का एक फोटोग्राफ विश्व में प्रसिद्ध हुआ था
2: जी,
0: उसके बारे में आप बात करेंगे?
2: जी, तो ये जब फोटोग्राफ पॉपुलर हुआ, आज के शब्दों में बोले शब्दावली में जब वायरल हुआ, तो लोगों में काफी उत्सुकता जागी कि ये यहाँ पर हैं तो क्यों हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में यूं तो मतलब ये सब चीजें क्या है आप देखिए, तो ये जो टेक्स्ट बुक्स में चीजें थी वो लेसन अभी आम जनता के समक्ष एक आ पाता है इसकी वजह से। अगेन इससे ये भी था कि जब यहाँ पे संख्या ज्यादा देखने को मिली तो इसको और कैसे बढ़ा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए हम काम क्या कर सकते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तरीके थी। तो इसी चीज से प्रेरणा लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूडा करके एक हमारा स्थल है, इनफैक्ट उसको एक कुदरती संरक्षण ऐसे भी मिलता है कि वो हमारे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ बीएसएफ का एक आउटपोस्ट है जो उसके आगे है, तो एक एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस मतलब मानव से थोड़ा सा वो आइसोलेटेड है। वहां पर हमने पिछले 5 वर्षों से डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि हम वहां पे अर्दन माउंड्स बनाए और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर जो फ्लेमिंगो है वो अपना अंडा ले डाउन कर सके। मैं जस्ट एक उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर इवन दो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करते हुए इंडिया में बहुत सारे पार्ट हैं, थाने में हमारा फ्लेमिंगो की काफी सारे देखने को मिलती है काउंट, पुलिकेट लेक में आपका उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, बट जो ब्रीडिंग है वो यहाँ कच्छ में काफी ज्यादा संख्या में होती है। हमने इसमें एक चीज ये देखी वहां पर कि अंडे जो ये ले डाउन करते थे अपने, वो रण विस्तार में पानी भर जाने के कारण उस अंडे का धोवाण बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाता था।
0: मतलब जो कुदरती परिवर्तन के हिसाब से फ्लेमिंगो इसके अंडा कम होते जा रहे थे,
2: मैं ये नहीं कहूंगा कम होते जा रहे थे, बट ये चौमासे के समय में जब यहाँ पे आते थे और अंडा ले डाउन करते थे तो वो अंडा धुल जाता था। अभी जब डिपार्टमेंट ने ये कुछ अर्दन माउंट्स बनाए सी शेप से डेजर्ट पॉन्ड कहते हैं, तो लीनियर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसपे वो जब अपना अंडा ले डाउन करते हैं वो अंडे का जो धोवाण है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रजनन बहुत सक्सेसफुल हो पाया है। तो एक बड़ा कारण है कि क्यों फ्लेमिंगो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
0: आयुष जी, जैसे आपने बताया कूडा साइट के बारे में, तो हम श्रोता मित्रों को यह भी बताए कि ये कूडा एक ऐसा एरिया है जहां पर मान

0: वस्ते बिल्कुल नहीं है, और
1: जी
0: उसको मतलब कुदरती संरक्षण मिल रहा है।
1: जी
0: और इसे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ में आपकी पसंद का एक गीत भी आप बताइए।
1: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।

0: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी लाखा जी के बाराते और उसके साथ ही साथ गुजरात में जिसको घोराड के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, उसका भी जिक्र किया था, उल्लेख किया था। तो उसके संलग्न माहिती के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और गुजरात राज्य वन बल प्रमुख है, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित है। डॉक्टर जयपाल सिंह, हम श्रोता मित्रों को ये बताएंगे कि जो अभी घोराड द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, उसकी संख्या गुजरात में कितनी रह गई है, और जो एक IUCN की कैटेगरी होती है उसमें उसका क्या स्टेटस है?
1: श्रोता मित्रों, जो घोराड हम लोग गुजराती में कहते हैं उसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, और राजस्थान में उसको गोडावन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक IUCN की कैटेगरी में, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई थी, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रख दिया गया है, क्योंकि जो है इसका प्रजनन कुछ कारणों से काफी कम हो गया था और संख्या लगातार घटती जा रही थी। जैसे हम यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ केवल 4 पक्षी जो केवल मादा हैं वही रह गए हैं, और राजस्थान में इसकी संख्या अभी थोड़ी बढ़ गई है और अभी करीब करीब 150 से 200 के बीच में कुदरती वातावरण में ये पक्षी हैं। उसके लिए काफी सारे प्रयास भी राज्य सरकारों ने किए हैं केंद्र सरकार के सहयोग से। ये एक प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि ये क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशीज है जो लुप्त होने के कगार तक पहुंची, उसको कैसे हम फिर से पुनर्वसन कर सकें और पूरे जो है जिस एरियाज में ये प्रजाति पाई जाती है उनमें फिर से ये प्रजाति दिखने मिले। दूसरा जो है कि ये एक जो GIB के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक काफी बड़े आकार का पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरता है, और मुख्य रूप से ये घास के मैदानों में ही रहता है, और इसका जो अंडा भी जो देता है वो भी ग्राउंड पे ही देता है, कोई पेड़ पे ये कभी नहीं चढ़ता है, वो ये घास के मैदान में रहेगा, वही प्रजनन होगा और वहीं से जो है इसके बच्चे पैदा होके वहीं पे ये बढ़ेगा। तो जो दूसरे कुछ परिबल जो रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में, उन परिबलों में थोड़ा सुधार हो तो इसकी प्रजाति को हम फिर से बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि अब हम लोग हो रहे हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, साथ में हम ये भी बताएं कि ये जो घोराड है इसकी संख्या दिन ब दिन क्यों कम हो रही है?
1: इसकी संख्या कम होने के काफी सारे कारण हैं, क्योंकि घास के मैदान काफी विस्तारों में कुछ कम हो गए, तो जो हैबिटेट लॉस हम उसको कह सकते हैं वो हुआ। उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे परिबल के कुछ शिकारी प्राणी उस विस्तार में बढ़ गए, छोटे शिकारी जिनको कहते हैं, के जैसे गीदड़ है, तो फोक्स है, इस तरह के नेवला है, इवन जो थोड़े पक्षी शिकारी पक्षी हैं वो भी, तो उनके कारण भी जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा खतरा रहता है, और कुछ अन्य परिबल बरसात का ज्यादा होना, चक्रवात वगैरह हैं, कुदरती अन्य परिबल भी इसके कारण है। साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके वो भी एक कुछ हद तक एक कारण होता है कि उससे डिस्टर्बेंस वो एरियाज में होता है, तो वो भी एक उसका कारण होता है।
0: कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: श्रोता मित्र, हमारे साथ कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी जी उपस्थित है। आयुष जी, आप ये बताइए कि घोराट की जो संख्या है उसके बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या प्रयत्न है?
1: केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं कि हाल में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारा घोराड़ है, जैसा साहब ने बताया, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो। तो एक ध्यान देवानी जो बात है कि अभी जो कच्छ में मौजूद घोराड़ हैं, ये सब मादा हैं, इसलिए इनका प्रजनन एक बड़ी समस्या रही थी टू स्टार्ट विद। इनफैक्ट ये एक नोंदनीय बात है कि सरकार के प्रयासों को आप इससे आकलन कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड ग्रेट इंडियन बस्टर सेंचुरी है हमारे। तो अभी यूं तो कई बार प्रयास किए गए हैं, बट अभी हाल में जंप स्टार्ट टेक्निक ब्रीडिंग की एक हमारी टेक्निक है जिसको हमने इसके प्रजनन के लिए उपयोग किया। इसमें इफेक्टिवली क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से जो अंडा होता है वो अंडा राजस्थान से लाया गया और यहां पर जो मादा घोराड़ है तो उनसे उनको इंक्यूबेट कराया गया। और ये भी एक काफी दिलचस्प बात है कि एक मादा अपने अंडे को पहचानती है, इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने जैसा अंडा रखा जाए और उसकी नॉलेज के बाहर रखा जाए।
0: आयुष जी, ये आपने बताया कि राजस्थान से अंडा लाया गया है, तो राजस्थान से अंडा लाने वक्त कौन कौन सी सावचेतियां रखनी पड़ती है?
1: जी, ये बहुत ही क्रिटिकल एक एस्पेक्ट होता है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखिए ये अंडे का जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इसमें वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो पूरा सर्टिफाई करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि किस परिस्थिति में इसको स्टोर करके लेके जाना है और किस परिस्थिति में इसे रिसीव करना है। इसका प्रॉपर पूरा जो वेटरनरी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं इसको बेचते समय भी और इसको प्राप्त करते समय भी। इनफैक्ट सीजेडए की काफी टेक्निकल गाइडलाइंस भी हैं इसके बारे में। तो

0: हमें काफी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है हर तरीके से इसके लॉजिस्टिक्स में।
1: और जैसे कि आपने बताया कि मादा के पास जो अंडा है अपना वो हमें लेना पड़ता है, और जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन से प्राप्त हुआ है अंडा उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि मादा के उसी वक्त अंडा के आसपास हाजिरी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे फिजिबल होता है?
0: तो फील्ड स्टाफ बहुत पैनी नजर रखता है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व भी किया जाता है कि उस जो हमारा घोराण है उसका पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है। जैसे वो एक स्थान से अभी जाके अपने घास विस्तार में जाए तो किस समय जाती है और वो कब लौटती है, तो ये सब विंडो, बेसिकली विंडो ऑफ टाइम हमारे जो फील्ड का स्टाफ है उसने पैनी नजर रख के ये एक्सरसाइज करी।
1: ये तो काफी मतलब फील्ड स्टाफ के प्रशंसनीय बात आपने बताई। डॉक्टर जयपाल सिंह साथ में बताते हैं कि ये जंप स्टार्ट टेक्निक है, ये उसका इंडिया में प्रथम बार प्रयोग किया गया गुजरात में कच्छ में।
2: इसमें मैं फिर से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और खास करके दो राज्य सरकारें अभी ये हाल में राजस्थान और गुजरात, इनका एक संयुक्त कार्यक्रम है और ये एक नेशनल प्रोग्राम तरीके भी लिया गया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले साल शासन में जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग की थी उसमें भी इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस पे भार दिया था, और उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम को बहुत ही हम लोग सावचेती से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें दो तरह के जो प्रजनन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, एक है कि कुदरती तरीके से कि इन सीटू ब्रीडिंग, तो इन सीटू में दो चीजें होती हैं, एक तो जो मतलब ब्रीडिंग नेचुरली जो हो रहा है इस विस्तार में जो भी विस्तार में उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको कंडीशन ऐसी दें कि जो बच्चे नए जन्मते हैं तो वो सर्वाइवल उनका बढ़े। और दूसरा मेथड है जो जंप स्टार्ट मेथड, ये भी एक टेक्निक है कि सीधा जो बच्चा जो है हम लोग जैसे आयुष ने बात किया कि अंडा हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो नए जो बच्चा जो उससे पैदा होता है तो उसका सीधा वाइल्डिंग हो जाता है, अदरवाइज जैसे हम लोग प्रजनन केंद्र कृत्रिम में हम लोग करें तो उसको वाइल्ड करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो उसका एक ह्यूमन इम्प्रिंट अगर उस पक्षी पे है तो वाइल्डिंग होना उसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हम दो तरह के प्रयास है, उसका इन सीटू कंजर्वेशन भी चल रहा है और एक्स सीटू भी चल रहा है। एक्स सीटू में भी काफी अच्छी जो प्रयास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, और जैसे बात करूं तो इसी साल में कुल नए अभी तक 14 बच्चे इसमें जन्मे हैं जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है उसमें, और कुल संख्या अभी जो केंद्र में है 84 हो गई है। तो वो जो एक क्रिटिकल लेवल के जो पक्षी का हम लोगों को जरूरत है, जिस तरह से ये कम होता जा रहा था, तो ये साथ में इस कृत्रिम के साथ जो हमारा प्राकृतिक के साथ में कृत्रिम प्रजनन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसमें अभी एक अच्छा नंबर संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है जो प्रयास हुए उनके कारण, और उसमें से भी कुछ जो नए बच्चे अभी जन्मते हैं तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रयास है कि सीधा उनको हम लोग वाइल्डिंग करें, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एसओपी भी बनाया गया है। उसके लिए एक ऑलरेडी एक हम लोगों ने मतलब राजस्थान में कैसा सेंटर छोटा तैयार किया है कि सीधा उसको छोटे बच्चों को ही वाइल्डिंग कर दें। तो उस तरह के प्रयास जो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ में जैसे गुजरात में आयुष जी ने बात किया कि हमारे पास जो पक्षी हैं वो केवल फीमेल हैं, तो वो केवल इनफर्टाइल एग हर साल देती हैं, तो वो इनफर्टाइल एग को फर्टाइल एग से रिप्लेस करके उससे नए बच्चे पैदा हों वो सीधे वाइल्डिंग होंगे, पर साथ साथ में जो अभी नए बच्चे जो इसके आ रहे हैं राजस्थान में उनको भी जो वाइल्डिंग के प्रयास है वो भी हम लोग गुजरात में भी अब फिर से हम लोग उसका प्रयास भी करेंगे कि वाइल्ड में ये बच्चों को भी छोड़े, जिससे इसकी संख्या जल्दी से बढ़ना शुरू हो, और जो अभी 4 की संख्या हमारे पास है तो वो जल्दी से बढ़ने लगे, तो ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उससे एटलीस्ट लोकली हम लोग बाहर आ पाए।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह आपने बहुत अच्छी तरह से बताया जंप स्टार्ट टेक्निक और साथ में जो नेचुरल टेक्निक है उसके बारे में। तो ये घोराड़ के वस्ते में संवर्धन हो तो उसमें जो चैलेंजेस है वो कौन कौन से है?
2: जैसे कि मैंने पहले बात किया था, एक तो इसका जो हैबिटेट होता है वो घास के मैदान होते हैं, और घास के मैदान भी बड़े मैदान इसको

0: चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटे 2-4 हेक्टेयर के मैदान होगा तो उसमें इसका प्रजनन होगा और ये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैदान छोटा होगा तो इसके ऊपर खतरा बढ़ेगा। तो उसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं कि वो 8-10 हजार हेक्टेयर तक के बड़े मैदान कंटिन्यूअस पैच जो घास के हुए वो तैयार रहे। फिर हम लोग इसमें जैसे प्रोसोपिस है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कांटे वाली जाते हैं, उनको भी हटाएं ताकि ये उसकी जगह पे घास अच्छा आए। तो ये है। फिर उसमें जो ग्रेजिंग के कारण थोड़ा खतरा होता है तो उसमें कम्युनिटी के साथ मिलके हम ग्रेजिंग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। फिर अगर खुला विस्तार है तो उसमें गांव से फेरल डॉग्स का भी एक खतरा रहता है, तो वो फेरल डॉग्स को कंट्रोल करने का भी प्रयास है। फिर उसके साथ ही जैसे छोटे कार्निवोर्स इस विस्तार में हैं उनके ऊपर ध्यान रखें, और जो खास करके जो ब्रीडिंग पीरियड है उस टाइम में वो छोटे कार्निवोर्स को भी हम लोग वहां से हटा पाएं, थोड़ा मजबूत उसका फेंसिंग कर पाए उस विस्तार की, ताकि वो एक सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हो, तब भी जो है जल्दी से इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, अभी अभी इसी साल गुजरात के 5वें एक जो वेटलैंड है, जल प्लावित विस्तार, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो आप श्रोता मित्रों को, ये हमने बात किया फ्लैमिंगो, सुरखाब, साथ में घोराड, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, साथ ही साथ में कच्छ के एक अन्य विशिष्टता है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई, उसके बारे में भी आप बताइए।
0: जैसे गुजरात जो है एक वेटलैंड के लिए, जो जल प्लावित विस्तार होते हैं उनके लिए खूब फेमस है, और कंट्री में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं गुजरात में हैं, करीब 17,000 के आसपास वेटलैंड्स हैं। वो विभिन्न जो पक्षी प्रजातियों के लिए भी बड़े अच्छे आश्रय स्थान रहते हैं। तो इसमें जो बड़े इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं तो रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। उसका एक बड़ा लंबा थोड़ा प्रोसीजर है कि उसका जो पहले एक एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद उसका बड़ा गहन आकलन होता है, और वो आकलन के बाद ही उसको एक रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अभी जैसे कच्छ में छारी डंड विस्तार जो और एक वेटलैंड है उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। बड़ा सुंदर एक वेटलैंड है और बहुत अच्छे संख्या में और अच्छी प्रजातियों के पक्षी उसमें आते हैं हर साल। तो उसको एक रामसर साइट का दर्जा मिलना हमारे लिए गौरव की बात है।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल 2026 के मन की बात कार्यक्रम में गुजरात कच्छ के फ्लैमिंगोस, फ्लैमिंगो सिटी, सुरखाब और साथ ही में घोराड, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात की। इस बात के लिए विस्तृत मार्गदर्शन के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित रहे, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी और श्रोता परिवार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: आपका भी खूब खूब धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें आज हमारा विषय था प्रकृति का संरक्षण। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण के बारे में। हमारे विशेषज्ञ थे श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग गुजरात राज्य, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। आपसे बातचीत कर रहे थे श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राजेश खराड़ी का। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की

गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्ज़ोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्ज़ोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र के नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडिया वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी दिन के 12:10 हुए हैं। अब हम आरंभ करते हैं सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण। सैनिक भाइयों, मैं पूनम बरुआ

आप सभी का तहदिल से स्वागत करती हूँ आज के प्रसारण में। हम अब से कुछ ही पलों में शुरू करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम होगा सब रंग।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार के बाद 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतिका। 1:40 पर कार्यक्रम होगा शीर्षक संगीत।

दिन के दो बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3:00। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। प्रस्तुत है पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए आरजू फिल्म से उदित नारायण और साथियों की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में वजीर फिल्म से। आइए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, खिलाड़ी फिल्म से आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे तेजाब फिल्म से ये गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?
0: ऐसे।

हमारे अगले कार्यक्रम सबरंग की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल सोमवार है और रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आरंभ होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 12:12 पर। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम तराना।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार के बाद 1:10 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम गीतमाला। 1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वतन के तराने।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चैनिका। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, हम पेश कर रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए ब्लैकमेल फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में कठपुतली फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये अगला गीत ज्वेल थिफ्थ फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। अब सुनिए यह अगला गीत आशा भोसले की आवाज में महुआ फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक आप हमारा ये प्रसारण सुन सकते हैं आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी 529.1 मीटर पर। पेश है कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अनामिका फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, परिचय फिल्म से लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की आवाजों में।

0: उस साथ से बिरहा भली जिस साथ में रिश्ता छोटा पड़ जाए। साथ तो खींचे जा सकते हैं, रिश्ते खींच के लंबे नहीं होते। जब रिश्ता ढले शाम आए तो उनके साए और लंबे हो जाते हैं।
1: सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में कश्मीर की कली फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत कल, आज और कल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और मन्ना दे की आवाजों में सुहागन फिल्म से।

अमित से मिली हूँ और तब से मैं जानती हूँ। उन्होंने मेरे साथ जो डुएट्स गाए थे वे अच्छे अच्छे डुएट्स थे। मेरे हिसाब से मन्ना दा ने हर तरह के गाने गाए हैं और वो बहुत वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो 100 साल जिए और ऐसे ही गाते रहें।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम में अब सुनिए लाजवंती फिल्म से ये गीत आशा भोसले की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहम्मद रफी की आवाज में कन्यादान फिल्म से।

संगीत के साथ गीति का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सैनिक भाइयों, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर से मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से 529.1 मीटर पर।

आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब पेश है कार्यक्रम शीर्षक संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए माशू का फिल्म से सुनिधि चौहान की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में फिजा फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए ड्रीम गर्ल फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक संगीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, कल हो ना हो फिल्म से आवाज है सोनू निगम की।

0: इसी गीत के साथ शीर्षक संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कुछ ही पलों में सुनेंगे बारी बारी से अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. India and United States reaffirms strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Debangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Falta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast near railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Dr. Jaishankar said India and the U.S. share a comprehensive global strategic partnership with deep and broad-based cooperation. He said both countries' ties impact and influence the world and that they have converging interests across several regions. He noted that discussions took place in a complex global environment and expressed confidence in open and productive talks. He also highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India. We devoted some time to nuclear energy cooperation as well. The passage of the Shanti Act has opened up new possibilities.
1: Dr. Jaishankar also underlined the importance of people-to-people ties and said legal mobility should not be adversely affected. India's position in favor of dialogue and diplomacy as well as safe and unimpeded maritime commerce was also reiterated. On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said that both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce.
2: I apprised Secretary Rubio of challenges that legitimate travelers face in respect of visa issuance. While we cooperate to deal with illegal and irregular mobility, our expectation is that legal mobility would not be adversely impacted as a consequence. After all, this is very relevant to our business, technology and research cooperation.
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio strongly underscored the strategic dimension of the partnership, describing India as one of the United States' most important partners in the world. He said both countries have suffered due to terrorism and added that India and the U.S. are strategically aligned on all key issues that will define the new century.
3: A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. And you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world.
1: Secretary Rubio further said that the two countries are also strategically aligned on energy. Responding to a question, he said, the United States is modernizing its immigration system for the 21st century. Responding to a question on Iran, he said, there's good news on that front and indicated that further positive developments are expected in the next few hours.
3: The United States remains committed to finding a peaceful, a diplomatic solution to this crisis. But let's be clear who we're talking about here. We're not talking about some pacifist government over there, some pacifist regime. We're talking about one of the most vicious regimes.
1: The leaders also discussed regional issues, including developments in the Gulf and the Indo-Pacific, ahead of the upcoming Quad Foreign Ministers meeting. Earlier in the opening remark, Mr. Jaishankar said that India and the United States share a comprehensive global strategic partnership marked by deep and broad-based cooperation. The External Affairs Minister said that the relationship between India and the US impacts and influences not only the two countries, but also other regions and the wider world. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting, which will be held on the 26th of this month. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has secured a massive lead in the 15th round of counting for the Folta Assembly re-poll. Counting is underway at the Diamond Harbour Women's University. Debangshu Panda of BJP was leading by 69,673 votes when reports last came in. Shambhunath Kurmi of the Communist Party of India Marxist was running in second position. Abdul Razak Molla of the Indian National Congress is third. And Jahangir Khan of All India Trinamool Congress was in fourth position. The counting has been conducted across 14 tables and will span a total of 21 rounds for the Folta constituency. Senior BJP leader and Union Minister Piyush Goyal today accused Congress leader Rahul Gandhi of creating a serious plot to spread anarchy in the nation. In a social media post, he said that Mr. Gandhi's statement against Prime Minister Narendra Modi points towards a major conspiracy by the Congress party along with all opposition parties. Mr. Goyal alleged that Congress party's true intentions are to defame the country, insult constitutional institutions, and going abroad to appeal to foreign powers to interfere in India's internal affairs. The Union Minister stated that the citizens of the country are wise and have a clear understanding of Rahul Gandhi and the opposition parties that are acting against the nation's interests. He said that the public has repeatedly given a resounding responses to these people. Mr. Goyal added that the INDI alliance's conspiracy will never succeed. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The government has advised all Indian citizens to avoid non-essential travel to the Democratic Republic of the Congo, Uganda and South Sudan until further notice in view of the evolving Ebola outbreak situation. It also directed Indian citizens currently residing in or travelling to these countries to strictly follow public health guidance issued by local authorities and maintain heightened precautions. Ministry of Health and Family Welfare informed that India has not reported any case of Ebola disease. Earlier, the World Health Organization, WHO, had declared Ebola outbreak a public health emergency of international concern following the reported outbreaks of Ebola disease in the Democratic Republic of Congo and Uganda. Ebola disease is a viral hemorrhagic fever caused by infection with the Bundi Bagyo virus strain of the Ebola virus. India has dispatched the first tranche of urgent medical supplies and protective kits to the African Centers for Disease Control and Prevention today. In a post on X, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the supplies have been sent in response to the emerging Ebola public health emergency. He added that India remains committed in supporting Africa in responding to the crisis in coordination with the African Union. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has issued an update regarding the Class 12th post-result process after technical issues on 21st and 22nd of this month led to incorrect fee deductions in some cases. In a statement, CBSE said that the issue occurred during applications for scanned copies of evaluated answer books. It added that in some instances, excess payment was deducted, while in others, lesser amounts were charged. The CBSE noted that in all cases of excess payments, the exact excess amounts will be refunded to the same payment method which was used for payment. Similarly, in cases where lesser payment was deducted, candidates shall be informed separately regarding payment of the balance amount if required. It further noted the scanned copies of the evaluated answer books shall be provided in all such cases without candidates being required to submit fresh requests. Prime Minister Narendra Modi today shared an article by Union Minister Jyotiraditya Sindhya highlighting how the five treasures of the Kanchenjunga continue to illuminate Sikkim's journey, paving the way for Visit Sikkim 2047. In a social media post, Mr. Modi said that the article portrays Kanchenjunga as a protector of the land, memory and consciousness of Sikkim. Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Rajiv Ranjan Singh, will chair the regional review meeting for the Northeast region tomorrow in Aizawl, Mizoram. The meeting will primarily focus on reviewing the progress of various schemes and programs being implemented in the fisheries, animal husbandry and dairying sectors across the Northeastern region. Discussions will also be held on future strategies for sustainable sectoral growth, farmers' welfare and livelihood enhancement. In Pakistan, 24 people were killed and several injured after a powerful explosion ripped through a railway line in Balochistan province today. The explosion occurred near the Chaman Fatak railway station in capital city Quetta. A train suffered partial damage in the blast, while 10 vehicles parked in the area were also damaged. Following the incident, an emergency was declared in government hospitals across Quetta, with doctors and medical staff summoned to handle the situation. Railway authorities said the Peshawar-bound Zafar Express was stopped at Quetta railway station after the blast as a precautionary measure. Babar Yusufzai, the spokesperson to the Home Minister, said that all relevant institutions have been placed on high alert following an explosion in the city. U.S. President Donald Trump has thanked law enforcement authorities and Secret Service agents for the swift action after a shooting near the White House. In a post on Truth Social, he said the suspect had a violent history and noted the incident occurred shortly after another recent security-related shooting in Washington. The Secret Service said a man opened fire near a White House security checkpoint at the 17th Street and Pennsylvania Avenue, following which officers returned fire. The suspect was yet taken to hospital and later died. A bystander was also injured, though it is not yet clear whether the person was struck by the suspect's bullets or by gunfire from officers. The suspect has been identified as a 21-year-old man. President Trump was inside the White House at the time of the incident, and this is the third such shooting-related incident reported near the president in recent weeks. The 125th edition of the French Open, commonly known as the Roland Garros, begins today in Paris. Novak Djokovic will launch his bid for a record-extending 25th Grand Slam title. The three-time champion seeded third opens against French big server Giovanni Mpetsi Pericard. Ninth session on court Philippe Chatrier, second seed and 2024 finalist Alexander Zverev, and seventh seed Taylor Fritz are also among the key men's singles players in action on the opening day. World number one Yannick Sinner will aim for his maiden French Open crown after finishing runner-up to Carlos Alcaraz last year. He will be in action tomorrow. In the women's draw, Coco Gauff will head into the French Open as a defending champion. Meanwhile, world number one Aryna Sabalenka will be aiming to win a first-ever French Open title, having come up second best to Coco Gauff in the final last year. India will also have representation in the men's doubles, with top-ranked Indian player Yuki Bhamri partnering New Zealand's Michael Venus, while N. Sriram Balaji teams up with Brazil's Marcelo de Molina. In IPL cricket, the Super Sunday double header will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. For Rajasthan Royals, it is a must-win game in the pursuit of a playoff berth. For Mumbai Indians, it was one of the most disappointing seasons in the franchise, as they've already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Last night, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Prav Simran Singh made 69 runs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Debangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Faulta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the Midday News.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
5: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
4: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
5: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
6: These would be the principles with which we would approach that region.
4: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
7: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
4: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करसियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करसियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
5: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
8: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुष

0: संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के प्रसारण में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए बाबा शैगल और अनुमणिक की आवाजों में मिस 420 फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, जब प्यार किसी से होता है, फिल्म से कुमार सामी।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आए। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए शरारत फिल्म से सोनू निगम की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए केके और अलीशा चिनॉय की आवाजों में, आपकी खातिर फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आए। अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत कुर्बानी फिल्म से नाजिया हसन की आवाज में। आइए सुनते हैं ये गीत।

इस गीत के साथ गीत अपना धुन पर आए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सैनिक भाइयों के लिए भी समाप्त होता है आज का प्रसारण। कल 12:10 पर आपके खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूनम बरुआ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: दिन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: ये जितनी भी उबासियां आ रही है ना, इन्हें आप जरा बंद कर दीजिए, क्योंकि अब समय है पूरा आपका ध्यान यहाँ लगाने पर। यहाँ मतलब आकाशवाणी रेनबो, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आपके साथ हूँ मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन, और मेरे साथ आज जो हैं वो एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया। जी दोस्तों, मेरे साथ हैं वो जो पिछले 14-15 साल से इस लाइन पर काम कर रहे हैं, श्री योगेश कुमार जी। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं।
2: हेलो, नमस्कार।
1: फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारी चर्चा श्री योगेश कुमार जी से, जिन्हें आपको पता है किताबें पढ़ने का बेहद शौक है और साथ ही बहुत अच्छे योगा थेरेपिस्ट भी हैं। उस बारे में भी हम बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया और योगा का क्या कनेक्शन हो सकता है। पर फिलहाल सबसे पहला सवाल योगेश जी कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है?
2: देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का वास्तविकता से बिल्कुल संबंध टूट जाता है।
1: जी,
2: वो उन सब बातों पे ज्यादा विश्वास करता है जो बिल्कुल सच नहीं होती, वास्तविक नहीं होती, और उनको जितना ही समझाने की कोशिश करो, उनका ये फर्म बिलीफ रहता है कि वो जैसा सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। वो दूसरे की जो बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, और इसमें कई प्रकार के उसे भ्रम रहते हैं जिसे डिल्यूजन्स कहते हैं, और डिल्यूजन्स के साथ हैलुसिनेशंस भी रहते हैं। डिल्यूजन्स ये रहता है कि कहीं कोई उसको प्लॉट तो नहीं कर रहा, कहीं कोई उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और कभी उनको आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तरह तरह की कमांड सुनाई देने लगते हैं, और उनका जो व्यवहार है और जो एक्शंस है वो जो आवाजें सुनते हैं उसके अनुसार उनका पालन करते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है।
1: कल्पना इतनी जबरदस्त स्ट्रांग होती है कि वो उसको जीने लगते हैं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और उनके सोचने समझने के व्यवहार करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। और स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में रियलिटी से बिल्कुल संबंध टूट जाता है। वास्तविकता में जीवन कैसा है, स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ क्या है, उनका बिल्कुल आभास नहीं होता है व्यक्ति को, और वो अपनी काल्पनिक दुनिया में जीना शुरू कर देता है।
1: योगेश जी, एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो आपने कहा एक भ्रमित जीवन जीते हैं, तो क्या ये भ्रमित जीवन 24 घंटे चलता है, या दिन के कुछ घंटे, या कोई एक पहर, या कोई एक घंटा ऐसा होता है कि जब वो उस कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं और बाकी समय बिल्कुल नॉर्मल और एकदम रेगुलर जिंदगी जीते हैं?
2: देखिए, ये कहना तो उचित नहीं होगा कि, पर हाँ, जो ऑब्सेशंस होता है इन सब बिलीव्स का, थॉट्स का, वो 24 घंटे ही रहता है। पर कभी ये थॉट्स और जो बिलीव बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं किसी टाइम पे, और किसी टाइम पे थोड़ा नॉर्मल्स हो जाते हैं।
1: ओके, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, साइकोटिक। मैं चाहूंगी कि आप इस शब्द पर थोड़ी और रोशनी डालें।
2: देखिए, जितनी जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं हम इनको दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है साइकोटिक डिसऑर्डर, दूसरा होता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जो होते हैं इनका कोई ऑर्गेनिक रिलेशंस नहीं होता है, कोई ऑर्गेनिक डिसीज जो है इसके पीछे नहीं होती है। ये एंजाइटी, डिप्रेशंस और स्ट्रेस से भी ये न्यूरोसिस डिसऑर्डर हो सकते हैं। okay. और न्यूरोसिस डिसऑर्डर थोड़े माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। okay. जबकि दूसरी तरफ जो साइकोटिक डिसऑर्डर हैं वो बड़े प्रोफाउंड होते हैं, बड़े सीवियर होते हैं, और इनका इसमें व्यक्ति का रियलिटी से बिल्कुल टच चला जाता है। अब जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोटिक की कंडीशन उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। डिल्यूजन डिसऑर्डर है, साइकोटिक की कैटेगरी में आता है। और पोस्ट ट्रामेटिक डिसऑर्डर है, डिप्रेशंस है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे न्यूरोसिस कैटेगरी में आते हैं।
1: ओके, तो दोस्तों आपने जाना कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो क्या चीज है, एक भ्रमित जीवन है। इसके बारे में अब हम और तफसील से बात करेंगे हमारे योगेश कुमार जी से, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित है हमारे और आपके हर तरह के सवाल का जवाब देने के लिए। तब तक मैं इनसे अपना प्रोग्राम डिस्कस करती हूँ, आप सुनिए ये गीत।

तो श्रोताओं, आपको बताना चाहूंगी आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। मेरे साथ है साइकोलॉजिस्ट श्री योगेश कुमार जी। आप पिछले 14-15 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपने योगेश जी ये बताया कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये एक भ्रमित जीवन है। आदमी अपनी कल्पना में जीता है।

0: तो क्या सिम्टम्स हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
1: देखिए, सिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स।
0: इसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं?
1: जी जी, पॉजिटिव सिम्टम्स का हम यहाँ वो सकारात्मक एटीट्यूड वाला पॉजिटिव नहीं लेते हैं।
0: ओके।
1: यहाँ पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब है कि पॉजिटिव सिम्टम्स इंक्रीज द नॉर्मल फंक्शनिंग।
0: अच्छा।
1: जो व्यक्ति की नॉर्मल फंक्शनिंग है, दिनचर्या है, वो एक्टिविटीज नॉर्मल सिम्टम्स में बढ़ जाती है। जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं तो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी और जो नॉर्मल जो एनर्जी है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है।
0: ओके।
1: तो इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स में सबसे पहले आता है हमारा डिल्यूजन्स आते हैं, हैलुसिनेशंस आता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच आती है एंड डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर आता है।
0: डिसऑर्गेनाइज स्पीच का क्या अर्थ हुआ?
1: देखिए, हम अगर श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम शुरू से हम लेके चलते हैं, पहले हम डिलीजेंस को लेके चलते हैं, भ्रम को लेके चलते हैं, फिर हैलुसिनेशंस को लेके चलते हैं, उसके बाद में डिसऑर्गेनाइज स्पीच और बिहेवियर की बात करेंगे
0: जरूर।
1: तो सबसे पहले डिलीजेंस हम देख लें कि इसमें स्पेसिफिकली फोर टाइप्स के डिलीजेंस होते हैं सिजोफ्रेनिया में। तो सबसे पहले होता है डिलीजन ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे व्यक्ति को लगा रहता है कि वो जो है, जो भी व्यक्ति बात कर रहा है उसके बारे में ही बात कर रहा है। अगर ऑफिस में वो जाता है, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो उसे ऐसा महसूस होगा कि उसके बारे में ही बात कर रहे हैं।
0: तो ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस हुआ।
1: हाँ, और कभी कभी तो जो सॉन्ग के जो लिरिक्स होते हैं, गानों के लिरिक्स होते हैं, वो भी अपने को पॉइंट आउट कर लेता है कि ये मेरे बारे में गाना गाया जा रहा है, ये मेरे संदर्भ में गाना गाया जा रहा है। और कोई बुक का पैसेज भी होता है, वो भी ये अपने आप में मान लेता है ये मेरे संदर्भ में लिखा गया है।
0: माय गॉड।
1: तो आप देख सकते हैं कितनी भयंकर स्थिति हो सकती है,
0: कितनी दुविधाएं और कितने तकलीफ में है वो।
1: जी, ये फिर आता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल।
0: जी,
1: डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में आदमी को ऐसा लगता है कि उसके फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। उसका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के पास है, कुछ कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को, उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। उसका कोई पड़ोसी कंट्रोल कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कंट्रोल कर रही है।
0: जैसे अगर किसी स्थिति में गुस्सा बहुत तेज हो तो वो क्या कहेंगे कि मैं नहीं, ये उनकी वजह से।
1: जी जी, कोई भी वो ये उसे बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि मैं अब अपने कंट्रोल में नहीं हूँ। और मेरा, जैसे एक हिंदी में वर्ड होता है सम्मोहन करना, वशीकरण करना, कि मेरा वशीकरण कर लिया गया है, सम्मोहन हो रहा है मेरे पे, तो ऐसा उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। फिर होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन में क्या होते हैं, अगर उसकी वाइफ किसी से बात कर रही है तो उसे ऐसा लगेगा कि भाई ये दोनों जो है आपस में प्यार करते हैं और ये प्लॉट तैयार कर रहे हैं और ये मुझे जो है मारने की कोशिश करना चाहते हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। उसे हमेशा ऐसे लगता है कि कोई पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और कोई मिलकर जो है सारे साजिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूं अगर वो कहीं काम कर रहा है। और इवन उसे फैमिली मेंबर्स पे ऐसा शक होता है कि वो सब उसका फैमिली मेंबर्स मर्डर करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आ जाती है।
0: तो ये जो शक करने की, कई बार हम सोचते कि ये तो आदत है, वो आदत नहीं है, कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया वहाँ मौजूद है।
1: ऐसी कोई आदत अपने आप कल्टीवेट नहीं हो रही है।
0: जी, जी,
1: तो हमें बहुत ही सावधान रहना होगा कि कहीं स्किज़ोफ्रेनिया के ये सिम्टम्स तो नहीं है।
0: जी जी जी।
1: और एक होता है हमारा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर में क्या होता है कि आदमी को ये महसूस होने लगता है कि वो तो ऑलमाइटी है, वो गॉड है, उसमें सुपर पावर है। और यहाँ तक प्रतीत होने लगता है कि मैं कोई नोबेल पुरस्कार जीत सकता हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ, ऐसी ऐसी वो कल्पनाओं में खोया रहता है। फिर हमारा आता है हैलुसिनेशन। तो सिजोफ्रेनिया में जो सबसे मुख्य होते हैं वो ऑडिटरी हैलुसिनेशन होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को आवाजें सुनाई देती हैं, साउंड सुनाई देते हैं, वॉइस सुनाई देते हैं, इवन उसे ऐसा भी प्रतीत होता है वो डायरेक्ट किसी से बात कर रहा है।
0: ओ, चाहे वो फिगर नहीं दिख रही हो लेकिन ऐसा कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि जैसे कोई सामने खड़ा है और वो बराबर उनसे बातचीत कर रहा है।
1: जी,
0: प्रॉपर जवाबों के सवाल वो दे रही है और सवालों के जवाब उनको मिल रहे हैं।
1: जी जी, इस पे एक मूवी भी आई है, उसमें तमन्ना भाटिया जी भी है। तो उसमें यही दिखाया गया है कि उस ये बुराड़ी की घटना पे बनाई गई है, जो दिल्ली में 10 लोगों ने एक साथ जो आत्महत्या की थी। और उसमें यही था कि वो ये सोचते थे कि उनके पिताजी मुझे कमांड दे रहे हैं और

0: उन्होंने मुझे ये इंस्पायर किया है, जो उस पे जो भी उन्होंने कार्रवाई की है, जो भी रिसर्च की है
1: उन्होंने, जी,
0: जी, इस इंसिडेंट पे जो भी पुलिस के द्वारा रिसर्च की गई है, तो उसमें यही पाया गया है कि वो ये, उनका ये मानना है कि उनके जो बच्चे थे वो ये, उनको प्रतीत होता था कि उनके पिताजी ये कमांड दे रहे हैं,
1: और एक को नहीं, मतलब जो दोनों तीनों जो भी बड़े लोग थे उन सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था।
0: जी जी, ये बुराड़ी की घटना थी नहीं, सुनता एक ही व्यक्ति था पर फॉलो दूसरे भी कर रहे थे उसे।
1: तो ये ऐसा ही एक सवाल हमारे पास आया था सागर का, विजयपुरा कर्नाटका से, कि वो 24 वर्षीय हैं और उनके दो सवाल थे कि एक तो सिम्टम्स क्या होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया।
0: हमने जैसे सिम्टम्स बताए, पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारी बात चल रही है
1: जी।
0: तो हैलुसिनेशंस में हमें ऑडिटरी हैलुसिनेशंस के बारे में बताया, फिर एक आता है सोमैटिक हैलुसिनेशंस भी होता है, जिसमें आदमी को ये प्रतीत होता रहता है कि उसके सर पे कोई इंसेक्ट तो नहीं रेंग रहा, उसके शरीर पे कोई इंसेक्ट तो नहीं रेंग रहा, तो इसे सोमैटिक हैलुसिनेशंस होते हैं। एक गस्टेटरी हैलुसिनेशंस होते हैं, जिसमें उसे किसी भी, जो भोजन उसने किया नहीं, जो ड्रिंक उसने पिया नहीं, उसका टेस्ट वो फील कर रहा होता है अंदर। और ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशंस भी होते हैं, और जिसमें स्मेल आती है उसे, स्मोक की स्मेल आएगी, पॉइजन की स्मेल आएगी, कोई भी स्ट्रेंज स्मेल उसे फील होती रहेगी, तो ये सारे हैलुसिनेशंस होते हैं।
1: ऐसा भी हो सकता है योगेश जी कि एक साथ दो या तीन चीजें चल रही हो, कि हैलुसिनेशन भी हो रहा हो, डिल्यूजन भी हो रहा हो।
0: जी जी, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, ऑडिटरी हैलुसिनेशंस तो बहुत कॉमन होता है, और ऑडिटरी हैलुसिनेशंस के साथ कई केसेस में देखा गया डिल्यूजन्स भी पाया जाता है।
1: ओके।
0: और अब हम करते हैं डिसऑर्गेनाइज स्पीच की चर्चा
1: जी।
0: इसमें क्या होता है कि बहुत बोल रहा है व्यक्ति, पर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस है इसकी कन्वर्सेशंस में। वो कभी एक टॉपिक पे बात करता है, अचानक वो कन्वर्ट कर लेता है अपने टॉपिक पे, दूसरे टॉपिक्स पे बात करने लगता है, और ऐसे ही कमेंट्री चलती रहती है, तीसरे टॉपिक्स पे आ जाता है, तो अगर कॉन्क्लूजन कुछ नहीं निकलता उसकी, जो कन्वर्सेशंस को हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस कर रहा है।
1: okay.
0: उसका टॉपिक सब्जेक्ट्स हमेशा जो है ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट चेंज होता रहता है।
1: जैसे अभी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात करते करते अचानक किसी कोई और टीवी के कार्यक्रम की बात करना शुरू कर देंगे, या कपड़ों की बात करना शुरू कर
0: देंगे,
1: और वो बात खत्म हुई नहीं कि उसके पहले कोई बाजार की बात शुरू कर दी, पेड़ पौधों की बात शुरू कर दी।
0: जी जी, इसे
1: आपस में कोई तालमेल ही नहीं।
0: सही कहा आपने, तो इसे हम क्लिनिकल टर्म में कहते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। फिर आता है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, इसमें क्या आता है, सिली एंड बिजारे बिहेवियर। आप गर्मी में भी बड़ा गर्म कंबल पहन के बाहर जा रहे हैं, गरम कोट पहन के जा रहे हैं, आपने बड़ी स्ट्रेंज टाइप के, जैसे स्ट्रेंजर्स कपड़े पहनते हैं, बड़ी विचित्र आपने ड्रेस पहनी हुई है, और कभी कभी पता नहीं चलता है, कोई मेल भी होता है वो भी लिपस्टिक लगा के और किस अंदाज में निकलता है, तो वो अलग ही पहचाना जाता है कि ये कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है।
1: हमारे पास अब कुछ सवालों की झड़ी सी लग रही है, तो इस गीत के बाद हम एक बार हमारे लिसनर्स के कुछ सवाल ले लेंगे और फिर हमारे कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ेंगे।
0: जी, फिर हम नेगेटिव सिस्टम पे चर्चा करेंगे।
1: जी, तो इस बीच हम पहले थोड़े हमारे लिसनर्स के सवाल ले लेंगे। तीन चार प्रश्न मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, इस गीत के बाद हम आपके प्रश्नों को लेंगे और योगेश जी से गुजारिश करेंगे कि वो इन सब प्रश्नों का तरतीबवार हमें सही जवाब दें।

0: स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आज बहुत तरतीबवार जाना कि बहुत ही जितने सिम्टम्स मैंने सुने आपसे अभी योगेश जी, तो दिल बहुत दुखा, बहुत तकलीफ हुई और विचलित हुआ मन कि जो इस सब से गुजर रहा है वो तो है ही तकलीफ में, लेकिन जो उसके साथ रह रहे हैं वो भी कितने तकलीफ में हैं, वो भी कितनी परेशानी में
1: जी, फैमिली को भी बहुत परेशानी होती है।
0: देखिए हमारे पास एक मधुबाला जी का मैसेज आया है कि मेरे पति मुझ पर ज्यादा शक करते हैं और बच्चों पर भी शक करते हैं। मैं जो खाने पीने की चीज उनको देती हूँ उन पर भी उन्हें शक रहता है कि उसमें मैंने कुछ मिला दिया है। उनके पिता भी कुछ कुछ ऐसे ही थे और बहुत ज्यादा इनके जो पति है वो बोलते हैं। डॉक्टर से दवाई भी ली है लेकिन वो खाते नहीं है, कहीं मुझे आने जाने नहीं देते, घर से भी नहीं निकलने देते और स्वयं भी घर से बहुत कम निकलते हैं और लगातार सब लोगों से मेरी बुराई करते हैं।
1: जिस हिसाब से आपने वर्णन किया है अपनी स्थिति का, तो उससे तो यही मालूम चल रहा है कि जो एक सिज़ोफ्रेनिया है जो एक पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपने बताया कि बहुत शक करने की आदत है और आप पे भी शक करते हैं और मुझे बाहर भी नहीं जाने देते हैं, और फिर आपने बताया कि मुझे मेरे फादर इन लॉ को भी ये बीमारी थी
0: जी, बिल्कुल।
1: तो उससे भी ये प्रतीत हो रहा है क्योंकि इसका जेनेटिकली भी अगर हम देखा जाए, अगर पेरेंट्स में ये बीमारी होती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी न्यू जनरेशंस में भी वो बीमारी जा सकती है। तो ये सारी चीजें मैं जब देख रहा हूँ, उनको शक करने की बहुत वो है, आपको भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं
0: जी।
1: तो ये पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में आता है और आपको अच्छे साइकेट्रिस्ट साइकोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
0: मतलब निराश होने की जरूरत नहीं,
1: नहीं
0: है?
1: बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। अब तो सिज़ोफ्रेनिया क्योरेबल है, बहुत अच्छा एडवांसमेंट हुआ है मेडिकल फील्ड में, बहुत अच्छी साइकोथेरेपीज हैं, बहुत रिसर्च हो रही है सिज़ोफ्रेनिया पे और आज जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो जैसे उनका तो होगा ही, उनके पति का तो होगा ही ट्रीटमेंट, तो क्या थोड़ी काउंसलिंग इनको वाइफ को भी दी जाएगी कि किस तरह से आपको पेशेंट को हैंडल करना है?

0: जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, और इसमें फैमिली साइकोथेरेपी की भी जरूरत होती है
1: जी।
0: क्योंकि हमें जो है उसके सिम्टम्स को, जो मरीज है उसके सिम्टम्स को समझने में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप थोड़े जो आप में एक अधीरता थी, आप अधीर थे अंदर से कि मेरे जो एक फैमिली मेंबर में क्या क्या चल रहा है, मेरे फैमिली मेंबर के साथ क्या क्या हो रहा है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सिम्टम्स वो है स्पेसिफिक बताता है, उसके बारे में बताता है, तो आपको थोड़ा तसल्ली हो जाता है कि ये जो बिहेव कर रहे हैं वो किसी बीमारी से कर रहे हैं, किसी दूसरी वजह से नहीं कर रहे हैं। तो उसका क्या कारण है, निवारण है, आपको पता चलता है, उसके सिम्टम्स पता चलते हैं, और आपको कोपिंग स्किल्स भी सिखाता है कि आपको उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे बिठाना है, आपको खुद अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है।
1: आपकी बात सुनकर उन्होंने अभी लिखा है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, वो दवाई भी नहीं खाना चाहते, मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ।
0: देखिए, ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। अभी WHO की रिपोर्ट आई थी कि साइकोसिस के 3 मरीज में से 1 मरीज डॉक्टर की सलाह ले रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करा रहा है और जो है बाकी जाना नहीं चाहते। तो ये बहुत गंभीर, यहाँ बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये अगर सिम्टम्स उनको किसी भी तरीके से अगर आप नहीं समझा सकते, आपके किसी रिलेटिव के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, किसी भी तरीके से मोटिवेट करिए उनको कि ये सारी चीजें क्यूरेबल हैं, उनको बताइए आप एक बीमारी से पीड़ित हैं और इसका इलाज है, और जब ये इलाज हो जाएगा तो हमारे जीवन में, हमारे पूरी फैमिली में जो है खुशहाली आ जाएगी।
1: बिल्कुल। मृत्युंजय कुमार ने चेरकी गया बिहार से मैसेज किया है कि मैं एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हूँ और नवरात्रि की बधाई तो दी है, साथ में वो कहते हैं कि मैं आरोग्य शिक्षक के रूप में भी क्लास लेता हूँ। विद्यालय में बच्चों के बीच सिज़ोफ्रेनिया की पहचान मैं कैसे कर सकता हूँ?
0: देखिए, आपने कहा अगर बच्चों में थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है, हम कभी सोचने लगते हैं कि जैसे एडोलसेंट में हार्मोन्स चेंजेस वैसे ही होते रहते हैं, कभी हम उनको उत्तरदायी समझ लेते हैं कि ऐसा बिहेवियर इसलिए कर रहा है कि हार्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं, टीनेजर है, इस तरीके की जो है नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। पर इसमें, इस स्थिति में हमें सिज़ोफ्रेनिया की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि इसलिए आपने देखा गया है कि ज़्यादातर सिज़ोफ्रेनिया की जो पहचान हम कर पाते हैं वो 20 से 40 वर्ष की आयु में कर पाते हैं, किशोर अवस्था में इतनी जल्दी पहचान नहीं हो पाती है। हम उसका जो कॉज जो ढूंढते हैं वही कहते हैं कि हार्मोन चेंजेस की वजह से या टीन एज में ऐसा बिहेवियर होता रहता है, ये कॉमन है, तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं।
1: जी जी जी, सब सवालों में एक सवाल अब बहुत अहम उभर कर आया है कि आखिरकार स्किज़ोफ्रेनिया होने के कारण क्या है?
0: देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया के होने के काफी कारण हैं। अगर हम पहले हम जेनेटिक कारण देखेंगे, जेनेटिक्स भी होता है, तो रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि अगर किसी एक पेरेंट्स में है तो चांसेस हैं स्किज़ोफ्रेनिया के उसके बच्चों में 10-12% चांसेस बढ़ जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने की, अगर एक पेरेंट में है।
1: और अगर ग्रैंड पेरेंट में हो, दादा दादी नाना नानी में, तो पोतों में, या
0: तो बात वही रही, अगर ग्रैंड पेरेंट्स में है, ग्रैंड पेरेंट्स से फिर न्यू जनरेशंस में आएगा तो हम उसी की बात कर रहे हैं।
1: Okay.
0: तो न्यू जनरेशंस में जब आएगा तो उसके जो चांसेस होंगे, अगर एक पेरेंट में है तो चांसेस जो है 10-12% होंगे, अगर दोनों पेरेंट्स में है तो ये चांसेस 40% बढ़ जाते हैं।
1: ओके, ये तो हुआ जेनेटिक,
0: ये जेनेटिक कारण हुआ। अब कई जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे जो मेन है वो डोपामाइन हाइपोथेसिस है। डोपामाइन हाइपोथेसिस में है कि एक्सेस डोपामाइन एक्टिविटी इन द सर्टेन एरिया ऑफ द ब्रेन, वो डोपामाइन एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है जिससे स्किज़ोफ्रेनिया होने लगता है। हालांकि दूसरे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जैसे सेरोटोनिन है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, पर डोपामाइन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन स्किज़ोफ्रेनिया। और दूसरा हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है एनलार्जमेंट ऑफ सेरिब्रल वेंट्रिकल्स। तो जो सेरिब्रल वेंट्रिकल्स है, सेट ऑफ 4 जो है कैविटीज है जो भरी होती है, एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उससे भरी रहती है, और ये जो वेंट्रिकल्स हैं दे प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू द न्यूरल स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन। जब हम MRI या दूसरे तरीकों से देखते हैं, ये पाया गया है, रिसर्च स्टडी में भी पाया गया है कि ये ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है वेंट्रिकल्स, तो उनमें

0: होता है या बच्चे का जो वेट है बहुत कम होता है, और कभी कभी क्या होता है डिलीवरी के समय जो डिप्राइवेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, उससे भी जो है सिजोफीनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे में। अब हम जैसे आपने कहा कि हमारे वश में नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जैसे कि स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं। अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं, स्ट्रेस को कैसे कोप अप किया जाए, स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स हम सीखते हैं तो हम जो है स्ट्रेस से सिजोफीनिया से बच सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेसफुल इवेंट्स जैसे कभी क्या होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, बच्चे की बच्चा माँ से बहुत प्यार करता है, माँ का अचानक देहांत हो जाता है, या किसी भी पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है, या दूसरे कोई इमोशनल ट्रॉमा है, वो भी सिजोफीनिया को जो है बढ़ावा देता है। और अब हम आते हैं फैमिलीज,
1: फैमिलीज पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो टॉक।

0: जमी और आसमां इस वक्त दोनों जो माहौल है वो ये गा रहा है कि स्ट्रेस जीवन में बहुत ज्यादा है। और आपने कहा कि अगर हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट को सही दिशा नहीं दी तो स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं। हम अब इससे आगे की बातचीत कर रहे थे कि और क्या कारण हो सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के जो एनवायरमेंटल इश्यूज में आएंगे।
1: देखिए, फैमिलीज में ये देखा गया है कि पुअर कम्युनिकेशंस है, आपस में लोग इंटरेक्शंस नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरेक्शंस कर भी रहे हैं तो वहाँ जो इंटरेक्शन स्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें क्रिटिसिज्म है, हॉस्टिलिटी है और एक्सेसिव इमोशनैलिटी है। तो हमें ऐसे जो इंटरेक्शन स्टाइल है बचना चाहिए। और कभी भी जो चाइल्ड की और मदर की जो रिलेशनशिप है या चाइल्ड और पेरेंट्स के रिलेशनशिप है वो बहुत मधुर होनी चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम आगे चल के उन बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता है, उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, जिससे वो मनोरोग और स्ट्रेस से बच सकते हैं। और फैमिलीज में हमने ये भी देखा गया है कि जो फैमिलीज हैविंग लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनमें सिजोफेनिया या मेंटल डिसऑर्डर ज्यादा पाए जाते हैं।
0: ओके। अभी पीछे हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स की बात कर रहे थे। पॉजिटिव सिम्टम्स तो पूरा कवर किया लेकिन नेगेटिव हमारे बीच में क्वेश्चंस की वजह से रह गया था, तो मैं चाहूंगी एक बार आप उसको वापस कंटिन्यू करें।
1: हाँ, देखिए, पॉजिटिव सिम्टम्स तो हमारे हो गए थे जिसमें हमने डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर बताया था। अब अगर हम नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो नेगेटिव सिम्टम्स वो होते हैं कि जो डिक्रीज नॉर्मल फंक्शनिंग को डिक्रीज करते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमने क्या बताया कि वो इंक्रीज करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग को, और नेगेटिव सिम्टम्स जो है डिक्रीज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट में है कि जिसे सिजोफेनिया है उसमें का जो फेस होगा वो इमोशनल लेस होगा, उसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, कोई भाव नहीं होंगे, कोई आईज कांटेक्ट नहीं देगा, ब्लैंक होगा बिल्कुल, वो किसी व्यक्ति को आईज कांटेक्ट नहीं देना चाहेगा। इसे हम फ्लैट इफेक्ट कहते हैं। फिर आता है दूसरा, पॉवर्टी ऑफ स्पीच। पॉवर्टी ऑफ स्पीच में है अगर आप उससे बोल रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो बड़ा लैप्स दे रहा है, आफ्टर ए लॉन्ग लैप्स वो आपके जवाब देगा, कोई प्रश्न का जवाब देता है और वो भी बहुत बहुत ही छोटा जवाब, और कभी कभी तो जवाब वो देगा ही नहीं, बहुत कम बोलेगा, और जितना भी आप बुलवाने की उसे कोशिश करेंगे उसका हाँ या ना में उत्तर होगा। तो इसे कहते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच। फिर हम तीसरा इसमें सिम्टम्स है लॉस ऑफ मोटिवेशन, कि लाइफ में कोई मोटिवेशंस नहीं, कोई सेल्फ केयर नहीं, ऑफिस जाना बंद कर देगा, अगर बच्चा है तो वह स्कूल जाना बंद कर देगा, नहाएगा भी नहीं, एक कमरे में पड़ा रहेगा, अपनी जो सेल्फ केयर हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखेगा,
0: उमंग नाम की जीवन में कोई चीज ही
1: कोई मोटिवेशन ही नहीं रह गया तो वो अपना सेल्फ केयर भी नहीं करेगा, वो सोशल पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाना पसंद करेगा, एक आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा। अब चौथा आता है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी एंड फीलिंग ऑफ प्लेजर। तो इसमें यह भी देखा गया है कि बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है, एक जगह इंसान पड़ा रहता है और बिल्कुल जो इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस है वो बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल खुश नहीं रहता आदमी, बहुत उदास सा रहेगा, तो उसका जो दृष्टिकोण है सभी चीजों के प्रति उदासीन हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो आपने ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे नेगेटिव सिम्टम्स में आती हैं।
0: रंजन लाल साहब की उम्र 50 वर्षीय है, कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि मुझे कोई कुछ बोलता है तो बात में बहुत गुस्सा आ जाता है और वही बात फिर दिन रात मेरे अंदर चलती रहती है, क्या इसका भी कोई कनेक्शन है किसी मानसिक विकार या बीमारी से?
1: देखिए, इस पे तो आपको एंगर मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दो चीजों पे काम करना है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने एंगर मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया था, तो ऐसा कोई प्रोफाउंड सीवियर कोई मेंटल इलनेस नहीं है आपको, आप थोड़ा एंगर मैनेजमेंट पे काम कीजिए।
0: हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जाना कि क्या है, क्यों हो सकता है, सिम्टम्स क्या है और अमूमन कारण क्या होते हैं। अब जो मेरा सवाल है वो ये है, क्या इससे उबर पाना, इससे ठीक हो जाना, निजात पाना संभव है?
1: देखिए, आज बहुत एडवांसमेंट है और साइकोथेरेपी काउंसलिंग है बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रही है, और अगर जो मरीज है टाइम पर डॉक्टर की सलाह लेते हैं, डॉक्टर के पास आता है।

0: अपना ट्रीटमेंट कराता है, क्योंकि सिजोफ्रेनिया में ये देखा गया है कि लोग जैसे इसमें डिल्यूजन वाले स्थिति होती है, हेलुसिनेशंस वाले स्थिति होती है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में हमने ऐसी चीजें देखी हैं, लोग इसे विचक्राफ्ट समझने लगते हैं, कोई जादू टोना समझने लगता है। तो आप सब लोगों से विनती है कि चक्कर में ना पड़े, ये कोई विचक्राफ्ट या जादू टोना नहीं है, ये एक बीमारी है, तो आप इसका प्रॉपर टाइम से इसका इलाज कराएं। अगर टाइम से इलाज कराएंगे, हाँ इसका जो इलाज थोड़ा लंबे समय तक चलता है, कई हमने मरीज देखे हैं कि बीच में ही अपना ट्रीटमेंट जो है डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ट्रीटमेंट आप पूरा करवाएं तो आप देखेंगे कि इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और आप इससे जो है छुटकारा पा सकते हैं।
1: मतलब 100% शत प्रतिशत निजात पाने के चांसेस हैं अगर हम अपना लगातार ढंग से डॉक्टर के कहे अनुसार अपना इलाज कराएं तो।
0: जी बिल्कुल।
1: जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है उस समय जो उनके परिवार वाले हैं उनके लिए आपके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, क्योंकि इसमें जब हम परिवार की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि परिवार वाले भी कैसी गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मरीज को हैंडल करना जो काल्पनिक दुनिया में रहता हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, वो फैमिली साइकोथेरेपी भी करते हैं और इसमें बताते हैं कि आपको मरीज को कैसे हैंडल करना है, उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे टिप्स देते हैं, योगा मेडिटेशंस करवाते हैं और उनका जो संबंध है आपस में, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं जो आपका इंट्रेक्शन स्टाइल्स है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो टॉलरेंस पावर बहुत कम हो चुकी होती है, तो आप में कोशिश करते हैं कि आपकी टॉलरेंस पावर बढ़े, आपका इंट्रेक्शन स्टाइल बढ़े, आपका और मरीज का जो संवाद है वो एक ऐसे स्तर पर आ जाए ताकि आप दोनों एक दूसरे को भली भांति जाने समझें।
1: स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को क्या अधिकतर दवाइयां दी ही जाती हैं या केवल काउंसलिंग, ये जैसे आपने कहा कि साइकोटिक थेरेपी से भी फर्क पड़ सकता है?
0: देखिए, सिजोफ्रेनिया में जो टाइप ए सिजोफ्रेनिया होता है जिसमें हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें दवाइयां बहुत जरूरी हैं, कि दवाइयों के साथ काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। तो दवाइयां और काउंसलिंग साइकोथेरेपी साथ साथ चलनी चाहिए तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।
1: ये दवाइयां भी क्या लंबे समय तक चलती हैं?
0: जी जी।
1: इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, फिलहाल हम दे रहे हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: इंद्रजीत का हमें मैसेज आया है दिल्ली से। उनका एक सवाल है, कहते हैं मैं मंगोलपुरी में रहता हूँ, मेरी बिटिया 25 वर्षीय है, वो बार बार अपने हाथ धोती है, अपने कमरे में ही रहना पसंद करती है और किसी भी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या क्योर है?
1: देखिए, अगर बार बार हाथ धो रही है तो आप समझिए कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और ये ओसीडी है, ये क्योरेबल है, तो आप जल्दी किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट को दिखाइए।
0: जैसे अभी यहाँ मुझे लगा थोड़ा डायग्नोसिस का प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है आम तौर पे हम घरों में हमें डायग्नोसिस करना नहीं आता,
1: जी, जी।
0: तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में डायग्नोसिस पर आप क्या कहेंगे?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस फील्ड में यही है कि डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो DSM-5 है, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, तो उसके अनुसार 3 सिम्टम जैसे हमने बताए, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, अगर 3 सिम्टम्स में से अगर 2 सिम्टम्स इसमें है और वो 6 महीने से अगर ये सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, तो आप समझिए कि डायग्नोज हो जाता है कि वो सिज़ोफ्रेनिया है। पर ICD भी इसी के बारे में डायग्नोज करता है। ICD होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। तो ICD-10 के हिसाब से यही 3 सिम्टम्स हैं, 3 सिम्टम्स में से 2 सिम्टम्स जरूर होने चाहिए, पर इसमें अवधि का डिफरेंस है, जहां DSM-5 जो है ये रिकमेंड करता है कि 6 मंथ्स ये सिम्टम्स चलने चाहिए, वहीं ICD-10 ये कहता है कि अगर 1 महीने भी ये सिम्टम्स चल रहे हैं तो डायग्नोस कर लिया जाता है कि ये सिज़ोफ्रेनिया से व्यक्ति पीड़ित है।
0: तो इस बात से ये अंदाजा क्या हम लगा सकते हैं कि जितना जल्दी अगर इस बीमारी को डायग्नोस कर लिया जाए उतना फास्ट इसका निजात हो सकता है?
1: देखिए, जितना जल्दी जल्दी अगर हम पकड़ लेते हैं सिम्टम्स और डायग्नोस कर लेते हैं, नो डाउट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और ट्रीटमेंट भी इतना लंबा नहीं चलता है।
0: अब हम ट्रीटमेंट की जैसे बात कर रहे थे, तो कितने तरह के ट्रीटमेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया में अवेलेबल है?
1: देखिए, मेडिकेशंस के जरिए भी हम इसमें जो है एंटीसाइकोटिक मेडिसिंस भी देते हैं, जिसमें जो है क्लोज़ेपाइन आजकल इंडिया में बहुत दी जा रही है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिल भी रहा है, और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी दी जा रही है, इसमें जो है करंट पास किया जाता है ब्रेन में और ये 8 से 12 बार दी जाती है सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को, और हफ्ते में सिर्फ ये 1 या 2 बार ये ट्रीटमेंट होता है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और ये उस केस में ज़्यादा है जहाँ कैटेटोनिक स्टूपर है। कैटेटोनिक स्टूपर मतलब कि बिल्कुल जो है इमोबिलिटी है, बिल्कुल इंसान जो है उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और जैसा एक स्थान पे जहाँ वो बैठा है, खड़ा है, वैसे ही बैठा रहता है, खड़ा रहता है, तो ऐसी कैटेटोनिक स्टूपर में पोजीशंस हो जाती है। और अगर कैटेटोनिक एक्साइटमेंट फेज में होता है तब भी उस केस में भी जो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज जो है बहुत अच्छी प्रूव हो रही है, और इसके अलावा हमारे पास जो है साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन पे भी हम काम करते हैं कि जो सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है हम उसे ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल स्किल सिखाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसको सेल्फ केयर के बारे में बताते हैं, सोशल पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बनाते हैं और मोटिवेट करते हैं कि वो फॉलो करें, और उसको एक्टिविटी बेस्ड थेरेपीज करवाते हैं जिससे कि उसका मोटिवेशन बढ़े और वो काम करने के लिए तैयार हो जाए।
0: जो अभी आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का बताया, ये जो आपने और तरीके बताए, एक पेशेंट या उसके घर वालों के लिए उसको कैसे पता चले कि इसमें ये दिया जाएगा, या जो सामने डॉक्टर है या जो सामने साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने ये सजेस्ट करा है? क्योंकि पेशेंट को इतनी समझ नहीं और मन में एक वहम, एक डर आ सकता है कि इससे कहीं चीज और बिगड़ तो नहीं जाएगी, तो किस लेवल पर आकर ये वाले ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, ये कैसे तय हो?
1: देखिए, मैं ये बता दूं कि जो आपने पूछा कि को भी कैटेगरी सिम्टम्स के हिसाब से सारे कैटेगराइज किया जाता है, जैसे पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया होते हैं, अगर डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस की चीज़ें ज़्यादा हो रही है, एक डिसऑर्गेनाइज्ड सिज़ोफ्रेनिया होता है, अगर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, जो हम सिम्टम्स में हमने एक्सप्लेन किया है, तो उसे डिसऑर्गेनाइज्ड सिज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। फिर ये आपका आता है रेजिडुअल्स, जो लेफ्ट ओवर सिम्टम्स बच गए हैं, यानी कि जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो रेजिडुअल्स में आ जाते हैं, और एक होता है कैटेटोनिक सिज़ोफ्रेनिया, जिसमें या तो एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाती है या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी की स्टेट आ जाती है कि जिसमें जहां बंदा बैठा है एक अगर हाथ वो कुर्सी पर अगर पीछे करके बैठा है तो उसी अंदाज में वो काफी उसी पोजीशन में काफी घंटों तक बैठा रहेगा। तो इसे कहते हैं जहां भी साइकोमोटर डिस्टर्बेंस होती है उसे कैटाटोनिक डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसे कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया कहते हैं। और ये कैटेगराइज करके सिम्टम्स देख के हम ट्रीटमेंट करते हैं।
0: योगेश जी, जिस तरह से हम और आप स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक और चलते ही रेडियो डॉक्टर का प्रोग्राम कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं से फाइनली क्या कहना चाहेंगे।
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल इलनेस है, अगर हम शुरू से कई प्रिवेंटिव मेजर्स लें, अच्छा योगा करें, ध्यान करें और सोशल पार्टिसिपेशंस करें, हॉबी कल्टीवेट करें, तो हम देखते हैं अगर धूप लें। आजकल मैंने ये देखा है कि जो ऐसी कल्चर हो गया है कि लोग धूप नहीं ले रहे हैं, बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आने लगी हैं। जो मैग्नीशियम्स हैं, B12 की बड़ी कमी आ गई, एक रिसर्च के मुताबिक B12, B6, B8 ये सब भी रेस्पॉन्सिबल है, इनकी डेफिशिएंसी भी रेस्पॉन्सिबल है सिजोफ्रेनिया के लिए। तो हम अब देखें हमारे शरीर में इन विटामिन्स की कमी तो नहीं हो गई है, तो ये सुनिश्चित करते रहें कोई विटामिन्स की कमी ना हो, आउटडोर गेम्स खेलें, योगा करें, मेडिटेशंस करें और स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे विनती करूंगा और स्मोक ना करें, ड्रिंक ना करें। तो मैं सबसे विनती करूंगा ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, एक सात्विक जो है आप लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो आप देखेंगे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं।
0: और एक अच्छा डॉक्टर, हमें ये पता कैसे चले कि हाँ ये डॉक्टर हमारे लिए परफेक्ट है? हम एक एज अ पेशेंट या एज अ फैमिली मेंबर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम डॉक्टर के पास जाएं?
1: देखिए अगर जगह हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पहले तो आप ये देख लीजिए कि क्वालिफाइड है, क्योंकि कई लोग इतना क्वालिफाइड नहीं है, क्यूब नहीं है कि वो आपका सही ट्रीटमेंट कर सके। तो हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज कराएं। और दूसरा ये कि जब आप देखें कि वो अप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज की नॉलेज तो है पर कितना डिलीवर कर पा रहा है, क्या वो शिद्दत के साथ आपकी आपके साथ उसकी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, आपको टाइम दे रहा है और वो भी क्या वो भी उसमें भी मल्टी टैलेंटेड है, वो भी मेडिटेशन आपको सिखा सकता है, योगा सिखा सकता है, उसकी भी अवेयरनेस बीमारी को लेकर कितनी है। तो ये सब अब जब आप जाते हैं, जब आप स्वयं ही आपको थोड़ा पता लगने लग जाता है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आप ऐसे ही डॉक्टर से इलाज कराएं जिसकी संवेदनाएं आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हों, क्वालिफाइड हो।
0: थैंक यू सो मच। मैं और मेरे श्रोता हम बहुत आभारी हैं आपके कि आप स्टूडियो आए और आपने हमें स्किज़ोफ्रेनिया जैसी जो एक मेंटल विकार है उसके बारे में इतनी तफ्तीश से बताया और पूरा एक खाका खींचा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, आपने जो जाना कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कारण क्या है और इसका इलाज किस तरह से संभव है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? इससे संबंधित कोई भी सुझाव या फीडबैक आप हमें दे सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर। एक बार फिर से दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इससे संबंधित

0: संबंधित कोई भी फीडबैक अगर आप देना चाहें तो आप हमें दे सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: मंगल भवन
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभ।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंगभवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों को पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से एक है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी गई है जाएगी। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
3: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन क्वांटम AI नाम की एक निवेश योजना को बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें नागरिकों को 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश के बदले प्रति महीने 3,00,000 रुपए की आमदनी का वादा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वायरल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार किया गया है। और खेलों में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 5 ओवर में 2 विकेट पर 39 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, नमः कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त चेतन। भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान इस कदर व्यस्त हो कि अपनी सेहत के लिए भी समय नहीं निकाल पाता है। फलस्वरूप आप आसानी से कोई गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। इन सभी मुसीबतों से पीछा छुड़ाने का एक बेहतरीन विकल्प है योग और मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाना। इसे करने के कई तरीके हैं, जिसके लिए न तो आपको अपनी दिनचर्या में बड़ा बदलाव करना होगा और न ही कोई खास तैयारी करनी होगी। लम्हे के इस प्रोग्राम में हम आपको मेडिटेशन क्या है, इसके कुछ आसान प्रकार, उपयोग और फायदों के बारे में बताएंगे। साथ ही प्रोग्राम के माध्यम से आपको इसे करने के सही नियम और समय से संबंधित जानकारी भी देंगे। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मेडिटेशन के प्रकार और फायदों के बारे में जानने से पहले जरूरी होगा कि मेडिटेशन करने के तरीके के बारे में अच्छे से जान ले। दोस्तों, ध्यान लगाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है, लेकिन कई लोगों में मेडिटेशन को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर मेडिटेशन कैसे करें। बता दें, मेडिटेशन करने के तरीके में कुछ खास नियम शामिल है, इन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन्हें अपनाकर आप मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बैठने की प्रक्रिया। सबसे पहले आप वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। अगर बड़े लोग नीचे नहीं बैठ सकते, एक कुर्सी में आराम से बैठ सकते हैं। बैठने की स्थिति में ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी रहे, ताकि आप सही से सांस ले सके। सबसे पहले अपने पूरे शरीर को आराम की अवस्था में ले जाए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, ताकि सभी मांसपेशियों को आराम मिल सके। इस प्रक्रिया को पैरों से शुरू करके अपने चेहरे तक लाए। सुनिश्चित करें कि पूरा शरीर आराम की अवस्था में है। आराम की अवस्था को हासिल करने के बाद अपने सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दे। अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से सांस लेने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस ले और इसी प्रकार बाहर निकाले। ध्यान के लाभ को हासिल करने के लिए इस क्रिया को पूरे मन से कई बार दोहराएं। तीसरे चरण में अब अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करें।

इसके लिए आप अपनी आत्मा या अंतर मन पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए आप 1 से 5 तक गिनती करें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। वही आप किसी ऐसी चीज या विचार पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर सकते हैं जो आपको सुख का अनुभव देता है। अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं तो संभव है कि आपका मन बार बार अन्य विचारों की ओर जाएगा। इस कारण जरूरी होगा कि मन में संतुलित की अवस्था को बनाने की कोशिश करें कि मन को भटकने से बचाए। अगर मन किसी कारण भटक जाए तो उसे दोबारा केंद्रित करने का प्रयास करें। नींद आना, खुजली का होना, भावनाओं का अनुभव, डे ड्रीमिंग यानी जागते हुए सपने देखना, कई प्रकार के विचारों का लगातार आना और कई प्रकार की अनुभूति होती है जो मेडिटेशन को तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए जरूरी होगा कि आप अपने मन को समझिए कि ये केवल आपको विचलित करने वाला कारक है जो आपके मेडिटेशन के रास्ते में पत्थर बन सकते हैं। इनसे बचने का प्रयास करें और मन को एकाग्र करें। इन सभी बाधाओं को पार करने के बाद ध्यान की चरम सीमा को हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। मेडिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने हथेलियों को रगड़कर आंखों पर लगाएं। इसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर ध्यान की अवस्था से बाहर आए और अपनी हथेलियों को देखें। मेडिटेशन कैसे करें इस बारे में जानने के बाद लम्हे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम मेडिटेशन के प्रकार बताएंगे, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। इनमें से कुछ खास के बारे में हम आपको बताने की प्रयास करेंगे इस लम्हे प्रोग्राम में। आध्यात्मिक मेडिटेशन। आध्यात्मिक ध्यान आपको मोह माया से अलग दुनिया को दिखाने में मदद करती है। इसके निरंतर उपयोग से आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समर्थ होते हैं। इससे विचारों और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए नई मानसिक ऊर्जा का आप में संचार होता है। दूसरा है दोस्तों, विपश्यना मेडिटेशन। ध्यान का यह तरीका सबसे प्राचीन माना गया है। बताया जाता है कि ध्यान के इस तरीके को करीब 2500 साल पहले प्रचारित और प्रसारित किया है। मेडिटेशन का यह प्रकार आज व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। इसकी सहायता से मनुष्य अपने मन के भीतर झांककर खुद को समझने की कोशिश करता है। इसकी सहायता से मनुष्य अपने विचारों व भावनाओं को नियंत्रित करने के साथ सही और गलत में फर्क करने की क्षमता को विस्तार देने में समर्थ होता है। ज़ेन मेडिटेशन एक और तरीका है दोस्तों। मेडिटेशन का यह प्रकार चीनी बौद्ध धर्म द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया है। बता दें कि ध्यान का यह तरीका माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें दिमाग को एकाग्र करने पर खास ध्यान दिया जाता है। ध्यान की इस मुद्रा में आपको सुखासन मुद्रा में बैठकर और हाथों को आपस में मिलाते हुए बैठना होता है। ध्यान की इस स्थिति में आपको मुख्य रूप से अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। ध्यान का यह प्रकार आपको दिमागी रूप से विकसित और समृद्ध बनाने में सहायक माना जाता है। ये ध्यान आध्यात्मिक ध्यान का ही एक प्रकार है। इसमें आप एक आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्र बिंदु मानकर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया आपको चेतन मन के परे ले जाकर अपने अचेतन मन में झांकने के लिए प्रेरित करती है। इससे दुनिया को समझना और उसे अनुभव करने के नजरिए में बदलाव महसूस होता है। आगे बढ़ते हुए अब सुनिए दोस्तों राजयोग मेडिटेशन के बारे में। राजयोग मेडिटेशन बहुत प्राचीन है। ध्यान का यह प्रकार आपको शांत रहने और खुद का निरीक्षण करने में मदद करता है। इससे आपके व्यक्तित्व में गंभीरता का भाव पनपता है। इस योग के खत्म बात यह है कि इसमें किसी प्रकार के मंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है। योग की इस प्रक्रिया में आप अपनी आंखें खुली रखकर ध्यान लगा सकते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। मेडिटेशन के इस प्रकार में मनुष्य अपने भीतर यानी अचेतन मन में झांकने का प्रयास करता है। यह आपको भौतिक बाधाओं जैसे दुख, सुख, खुशी और गम से दूर ले जाकर अपने अस्तित्व का एहसास कराता है, जो आपको ये समझाने में मदद करता है कि भौतिक चीजों का दुनिया में कोई भी मोल नहीं है। तो दोस्तों, कई प्रकार के योग और मेडिटेशन है, इसके बारे में तो हमने बात की। अब इसके बेनिफिट्स भी बहुत है दोस्तों। तनाव में कमी। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से तनाव कम होता है और दिमागी शांति का अनुभव होता है। मेडिटेशन के उपयोग से चिंता और अवसाद से भी छुटकारा पाने से सफलता हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन से दिमागी विकास होता है।

0: है, दर्द से छुटकारा मिलता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप रोज मेडिटेशन कीजिए। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow।
2: 4:15, 4 सेकेंड, नैना मौज एक बार फिर से आ गई है प्रोग्राम अल्फा जैन के साथ। वादा किया था आपसे कि आज भी कोई न कोई बनेगा रेनबो जीनियस। तो रेनबो जीनियस में शामिल होने के लिए और सवालात के जवाबात देने के लिए जल्दी से हमारे नंबर नोट कर लीजिए जिन पर आपको कॉल करना है। सबसे पहले नंबर है हमारा 01123421084 और दूसरा नंबर है 01123421080 2342 1080। ये नंबर्स हैं हमारे जिस पर आपको करना है कॉल और हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल और आपने देने हैं उनके जवाब। और जो देगा 5 सवालों के लगातार सही जवाब वो बनेगा हमारा आज का रेनबो जीनियस। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। हिना मौज है आपके साथ, प्रोग्राम है अल्फा जैन।

0: रेनबो जीनियस। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सवाल की। हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: यज्ञ
0: जी। तो जल्दी जल्दी हमारे सवालों के जवाब दीजिए। सबसे पहले ये बताइए कि भारत की राजधानी कौन सी है?
1: नई दिल्ली मैम।
0: गुड। राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा?
1: मोर।
0: नो, आपका आंसर रॉन्ग है, हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं। और अब हम लेंगे दूसरा कॉलर अपना। जी, सेकंड सवाल का जवाब हम दे देते हैं आपको। बंगाल टाइगर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित हुआ था 1973 में। और आप जल्दी से आप बताइए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? लगता है हमारे जी कॉलर जी ड्रॉप हो गए हैं। नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो
2: हेलो, मैं केशव चक्रवर्ती त्रिपुरा से।
0: जी, जल्दी जल्दी हमारे सवालों के जवाब दीजिए सर। जनगण मन किसने लिखा था बताइए?
2: हाँ, क्या मैडम, क्या प्रश्न है?
0: जनगण मन अधिनायक जया है,
2: रविन्द्रनाथ टैगोर।
0: गुड।
2: ऑफ इंडिया
0: जी। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है?
2: नील ग्रह, ये तो ब्लू अर्थ अर्थ आउंड हमने पीछे दी और
0: जी। गलत जवाब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए हम दूसरा कॉलर अपना ऐड करें। इससे पहले इसका आंसर हम दे देते हैं कि ये नीला ग्रह पृथ्वी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 71% पानी है। तो जल्दी जल्दी हमें कॉल कीजिए और बनने की कोशिश कीजिए आज का रेनबो जीनियस, और हमारे दीजिए सवालों के जवाब। देखते हैं कौन कौन आज बनता है रेनबो जीनियस। नंबर है हमारे 011-2342-1084, 011-2342-1080।

0: बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आ रही हैं, देखें अगला कॉल किसका है। हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: शंकर बोल रहे हैं कटिहार से मैडम।
0: जी शंकर जी, जल्दी जल्दी हमारे सवालों के जवाब दीजिए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है?
1: हॉकी है मैडम।
0: वेरी गुड। ताजमहल किस शहर में है?
1: क्या मैडम
0: जी, रिकॉर्ड मत कीजिए, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ये बताइए ताजमहल किस शहर में है?
1: आगरा में है।
0: गुड। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?
1: क्या गुड बोले मैडम?
0: कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक मतलब कंप्यूटर जो है उसको किसने इजाद किया था?
1: चार्ल्स बेबेजॉल किया था
0: जी।
1: चार्ल्स बेबेजॉल किया है
0: जी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था?
1: 1950 में हुआ है, 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में।
0: वेरी गुड। चार सवालों के जवाब आप दे चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपके लिए है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
1: प्रशांत महासागर है मैडम।
0: वेरी गुड, आप तो बन गए हैं हमारे आज के रेनबो जीनियस। और कौन कौन बनता है ये देखते हैं। अगला कॉल हमारे पास किसका है? हेलो।
2: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: जी मेरा नाम आकाश है।
0: आकाश जी, ये बताइए कि सूरज किस

0: दिशा से उगता है?
1: सूरज पूर्व दिशा से उगता है।
0: गुड। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
1: दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट को माना जाता है, जो हिमालय।
0: वेरी गुड। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है?
1: चीता। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता माना जाता है
0: जी। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है?
1: 5 जून को आने ही वाला है मैम
0: जी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है?
1: H2O।
0: जी वेरी गुड। आज तो हमें 2-2 मिल गए हैं अपने रेनबो जीनियस। और कौन कौन बनता है देखते हैं
1: जी।
0: हेलो
2: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: केशव चक्रवर्ती।
0: केशव जी ये बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है?
2: ये मैंगो।
0: गुड। चांद पर चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
2: नील आर्मस्ट्रांग।
0: वेरी गुड। बड़े इंटेलिजेंट लोग हमें सुनते हैं। सबसे लंबी नदी दुनिया की कौन सी है?
2: क्या मैडम क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज।
0: सबसे लंबी नदी दुनिया की कौन सी है? नदी
2: ये तो नदी तो नील ना, ये मिशन नील।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप 3 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं। और चौथा सवाल है, राष्ट्रीय गान गाने में कुल कितना समय लगता है?
2: मैडम थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन।
0: जी राष्ट्रीय गान गाने में कुल कितना समय लगता है?
2: 15 सेकंड ओनली। जनगण मन कंपोज बाय रवींद्रनाथ टैगोर, इट्स आवर नेशनल एंथम।
0: कितने सेकंड?
2: 52 सेकंड।
0: वेरी गुड। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है?
2: मैडम थोड़ा सा आवाज आ रहा है, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन।
0: देखिए बार बार मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वेटिंग पर हैं। क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है आपकी नजर में?
2: ये टू डीमोनिटाइज टू मेक टू ट्रांजेक्शन थ्रू डिजिटल पेमेंट,
0: डिजिटल रूप से सशक्त बनाना हम लोगों को। जी आप ठीक से नहीं दे पाए। खैर बहरहाल बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर, सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम अल्फा जैन और बनने की कोशिश कीजिए आज का रेनबो जीनियस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप। 4:32, 32 सेकेंड हिना मौज है आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है एल्फाजेन, और एल्फाजेन में इस वक्त हमारे साथ कौन है? हेलो जी।
3: हेलो, नमस्ते मैम।
2: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम निधि है, मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ।
2: निधि, निधि जल्दी जल्दी हमारे सवालों के जवाब देकर बनिए आज आप रेनबो जीनियस। तो जल्दी से बताइए कि हाल ही में आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता था?
3: 2025
2: में हुआ था ना?
3: 25
2: हाल ही में, मतलब जो अभी लास्ट गुजरा। जी बताइए। ऑप्शंस नहीं है आपको बताना है, सिर्फ सवाल का जवाब डायरेक्ट। नहीं, इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, सॉरी। नो, हेलो
4: हेलो
2: जी, कौन बोल रहे हैं?
4: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार जी।
4: जी, रामधारी अवाना बात कर रहा हूँ, हिसार हरियाणा से।
2: हिसार हरियाणा से जी, बताइए जल्दी से हमारे सवाल का जवाब कि हाल ही में आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता था?
4: अभी तो मैम फाइनल हुआ भी नहीं, इस बार का पूछ रहे
2: हैं। नहीं नहीं, लास्ट जो जीता था। राइट, अब अगला सवाल जो है हमारा वो ये है कि हिंदुस्तान और किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान को और किस नाम से पुकारते हैं?
4: इंडिया, भारतवर्ष।
2: जी सही कहा आपने। और ये बताइए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं?
4: तिरंगा।
2: गुड। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है?
4: 15 अगस्त।
2: पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू।
2: वेरी गुड, आपने पांचों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। आपका क्या नाम है?
4: रामधारी अवाना।
2: रामधारी जी, आप बनते हैं हमारे रेनबो जीनियस, तीसरे रेनबो जीनियस। सोचिए, मुझे लग रहा है कि मैंने शायद सवालात जो हैं वो बहुत इजी ले लिए।
4: थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल मैम थोड़ा सा डाउन है।
2: हाँ, मैंने वही सोचा।

0: कि शायद हो सकता है कि, लेकिन हमारे काफी इंटेलिजेंट लोग हैं. आमतौर पर क्या होता है ना कि हम लोग आसान सवालों के जवाब जो हैं वो नहीं याद कर पाते, ना हमें याद रहते हैं, ना इतनी इम्पोर्टेंस हम देते हैं. तो आसान अगर किसी चीज को आप जानते हैं तो इसका मतलब आप बहुत सारी चीजों की नॉलेज रखते हैं.
1: लेकिन ये कहना चाहूंगा कि श्रोताओं की जो कॉल है वो बहुत ज्यादा आप ले रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है.
0: कोशिश कर रही हूँ जी. थैंक यू.
1: जी
0: ओके
1: थैंक
0: जी.
1: यू.
0: तो जी अगले कॉलर हमारे जो हैं वो अभी हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं देखते हैं. हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी. कौन?
2: नमस्ते जी.
0: नमस्कार जी.
2: जी मैं असम गुवाहाटी से अरूप बोल रहा हूँ.
0: जी बताइए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं?
2: 32.
0: नहीं. अगला कॉलर देखते हैं कौन है हमारे पास. हेलो. लगता है हमारी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है. बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं. कोशिश करती हूँ थोड़े सख्त सवालात पूछे जाएं आप लोगों से. बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर, रेनबो जीनियस में.

0: जी हेलो, कौन है हमारे साथ?
1: जी मैं उमेश बात कर रहा हूँ, हरियाणा से।
0: नमस्कार उमेश जी, जल्दी जल्दी हमारे सवालों के जवाब देंगे आप?
1: जी
0: बताइए, भारत में कुल कितने राज्य हैं?
1: भारत में टोटल 29 राज्य।
0: एक और आपने जोड़ लिया, वैसे तो 28 हैं। बहरहाल अगला बताइए आप, ये मुझे कि भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा है?
1: भारत रत्न।
0: वेरी गुड। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है?
1: वट वृक्ष।
0: बरगद का पेड़।
1: जी
0: जी। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? इतना टाइम नहीं दे पाएंगे जी, अगला कॉलर वेटिंग। हेलो जी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके सवालों के जवाब हमने अपने कॉलर से पूछे हैं, और कुछ लोग बता पा रहे हैं और कुछ लोग एक दो बताने के बाद मतलब चार पांच नहीं तक पहुंच पा रहे हैं। बहरहाल अगला जो सवालों का सेशन होगा वो होगा आकाशवाणी से रिलेटेड, क्योंकि 90 साल हम मना रहे हैं आकाशवाणी के, सेलिब्रेट कर रहे हैं ये 90 साल जो आकाशवाणी ने बिताए हैं आप सबके साथ, और हम लोग बहुत धूमधाम के साथ इस सेलिब्रेशन को कर रहे हैं, और उन्हीं से रिलेटेड हम आपसे बात करेंगे। आकाशवाणी से आप इतनी मोहब्बत करते हैं और आकाशवाणी की मोहब्बत का सबूत जो है वो आपने अब देना है कुछ सवालों के जवाब देते हुए। कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, देखें कौन है। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैडम, मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से अरविंद कुमार बात कर रहा हूँ।
0: जी तो आप हमारे सवालों के जवाब देंगे आकाशवाणी। जैसे कि आपको पता है कि आकाशवाणी के हम 90 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगी। आप लोगों की मोहब्बत के सबूत भी तो चाहिए ना हमें।
2: हाँ मैडम, अच्छा लगता है आपको आकाशवाणी अच्छे कार्यक्रम आते हैं आपके।
0: जी बताइए कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी?
2: भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत
0: इतना
2: तो 6 में हुई थी।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग। अब हमारे साथ जो अगले कॉलर जुड़ेंगे उनसे पूछेंगे ये सवाल हम उनसे पूछेंगे, तो तैयार हो जाइए अपने सवालों के लिए। और एक और प्यारा सा ट्रैक सुनाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: हेलो
1: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
0: सुधीर बात कर रहा हूँ मैडम, पूर्णिया से।
1: जी सुधीर जी, जल्दी से बताइए कि आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है?
0: क्या मैडम?
1: आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है? आकाशवाणी से आप सब लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और हम 90 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं आकाशवाणी के, तो उस पर सवाल तो बनते हैं। बताइए जल्दी।
0: पहले वाला का जवाब दे, 1927 में हुआ था मैडम।
1: हाँ तो वो तो आपने देख लिया होगा ना, अब सेकंड वाले का जवाब जल्दी से दे दीजिए।
0: आदर्श वाक्य क्या है? सब ये है,
1: नहीं बता पाएंगे। आदर्श वाक्य हमारा है बहुजन हिताय
0: बहुजन सुखाय। महात्मा बुद्ध का ये है मैडम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है।
1: जी जी, मैंने सारी डिटेल आपसे नहीं मांगी थी, सिर्फ आपसे वाक्य पूछा था, आपने नहीं बताया। बहरहाल अगला कॉलर लेते हैं, हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो
0: हेलो।
1: जी जी, आप ये जो रेडियो चला रखा है आपने, थोड़ा साइड कर दीजिए क्योंकि आवाज आ रही है उसकी।
0: जी जी, बंद कर दिया है।
1: जी बताइए, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है?
0: जी वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है।
1: वेरी गुड। अब ये बताइए, भारत की खोज किसने की थी?
0: किसका खोज मैडम?
1: भारत की, जहाँ हम रहते हैं।
0: अच्छा, भास्को डा गामा ने।
1: वेरी गुड। अब ये बताइए कि भारत को आजादी कब मिली थी?
0: 1947 में, 15 अगस्त।
1: हाँ, गुड गुड गुड गुड। और ये बताइए कि आप महात्मा गांधी जो हैं, वो राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले?
0: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
1: नहीं जी, ड्रॉप कर रहे हैं आपको।
0: अच्छा, अच्छा, नेता जी। अच्छा,
1: हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो,
2: आरिफ खान
1: जी।
2: हाँ जी
1: जी, तैयार हैं आप सवालों के जवाब देने के लिए?
2: हाँ जी।
1: भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
2: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
1: सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था?
2: मोहनजोदड़ो।
1: अशोक महान किंग वंश के शासक थे, किस वंश के शासक थे अशोक जो थे?
2: मौर्य वंश।
1: वेरी गुड। आप लगता गूगल खोल के बैठे हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था?
2: बाल गंगाधर तिलक।
1: ठीक है, आखिरी दे दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे?
2: परम पूजनीय आचार्य चाणक्य कौटिल्य वाले।
1: वेरी गुड जी, एक और हमें मिल गए हैं, ये
2: मंगोलपुरी से, दिल्ली से।
1: जी रेनबो जीनियस जी, बहुत शुक्रिया सवालों के जवाब देने के लिए।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम बारात।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: 4:56 हिना मौज के आप सबको खुदा हाफिज कहने का वक्त आ चला। और आप लेकिन कहीं मत जाइएगा, सिटी लाइट्स में रहेंगे राजेश आपके साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जो आपको देंगे। तो फिलहाल रेनबो जीनियस काफी सारे लोग बने आज और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगी। और आकाशवाणी का अल्फा जैन प्रोग्राम बस यहीं पर खत्म होता है। ये आखिरी सॉन्ग इस प्रोग्राम का आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौता वार्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में इसके विस्तार का स्वागत किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति विविधता महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित ये सुनिश्चित करने में है कि वैश्विक ऊर्जा मूल्य निचले स्तर पर बने और व्यापार निर्बाध हो।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत के शुरुआत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री रूबियो 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के देवांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 1,04,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है, जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भोगी जाऊं भोगी जाऊं जिगी जागी जाऊं। जो तो घरे बहु बेटे पीठे पोरे चोरे गो जो बोले रो अंगना उड़ेगे ना बोले गो। जिगी जागी जाऊं भोगी जाऊं जिगी जागी जाऊं। जिगी जागी जाऊं भोगी जाऊं जिगी जागी जाऊं। जिगी जागी जाऊं भोगी जाऊं जाऊं।
1: अरे जिया मोर लाल के
0: और
1: जौवन कोलोसी पानी छलके अरे जिया
2: मोर लाल के। श्रोता शुनी आसे गीतर नियमिया अनुष्ठान मनोरंजन अनुष्ठानत एबार आगबढ़ाइछो फागुनी छबिखनर परा जयंत हाजरिकार कंठर गीत। গীতৰ কথা আৰু সুৰ ডক্টৰ উপেন কাকতিৰ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতেই ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই জয়া ভাৰতী। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की चार सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एच

0: প্ৰিয় শ্ৰোতা, খণ্ডেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তা শ্রুয়ন্তাম প্রবাচক পুনীত ত্রিপাঠী। আদৌ মুখ্য বার্তাঃ। ভারত সংযুক্ত রাজ্য আমেরিকা দেশৌ রণনীতিক সহভাগিতাম সুদৃঢ়ীকরণায় পুনঃ পুষ্টিম কৃতবন্তৌ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शीघ्र व्यापार संधेः आह्वानम् अकरोत्। सहैव राष्ट्रस्य कृते ऊर्जा आपूर्तेः विविधीकरणे बलम् अददात्। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टी दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा इत्येषः फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने महति विजयम् अवाप्नोत्। अमेरिकीय विदेश मंत्री मार्को रूबियो उक्तवान् यत् भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यंत महत्वपूर्णेषु रणनीतिक सहभागिषु अन्यतमः अस्ति इति। प्रशासनेन इबोला संक्रमणस्य प्रकोपं दृष्ट्वा सर्वे भारतीय नागरिकाः कांगो, युगांडा तथा दक्षिण सूडान देशेषु अनावश्यक यात्रां न कर्तुं परामर्शः प्रदत्तः। पाकिस्तानस्य बलूचिस्तान प्रान्तस्य क्वेटानगरे रेलमार्गस्य समीपे जाते विस्फोटे चतुर्विंशति जनाः मृताः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स दलं दिल्ली कैपिटल्स दलेन सह कोलकाता स्थिते ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धां करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। डॉक्टर एस जयशंकर मार्को रूबियो चोभौ अद्य नवदिल्लीनगरे अनेक विषयेषु चर्चाम् अकुरुताम्। उभौ भारत अमेरिका सामरिक सहभागितां महत्वपूर्णाम् अवदताम्। ताभ्याम् उक्तं यत् एषा सहभागिता व्यापार ऊर्जा गतिशीलता क्षेत्रीय सुरक्षा क्षेत्रेषु विशेष रूपेण अस्ति। डॉक्टर जयशंकर अवदत् यत् भारतस्य अमेरिका देशेन सह व्यापकः वैश्विकः सामरिक सहभागित्व संबंधः अस्ति। यः गहन सहयोगे आधारितः अस्ति। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः संबंधाः संपूर्ण विश्वे प्रभावं जनयन्ति तथा च अनेकेषु क्षेत्रेषु तयोः हितानि समानानि सन्ति। विदेश मंत्री उक्तवान् यत् एषा वर्तमान चर्चा कठिन वैश्विक परिस्थितिषु अभवत्, परञ्च तस्मै मुक्त मनसा सार्थका चर्चा भविष्यति इति विश्वासः अस्ति। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये व्यापार संधेः शीघ्रमेव अन्तिमरूपेण निर्धारणम् आवश्यकम् अस्ति। तेन ऊर्जा व्यापारे जातस्य विस्तारस्य स्वागतं कृतं तथा च उक्तं यत् विविध स्रोतेभ्यः ऊर्जायाः आपूर्तिः भारतस्य ऊर्जा सुरक्षायै अत्यावश्यकी वर्तते।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर जन संबंधानां महत्वं प्रतिपादयन् अवदत् यत् वैधानिक आवागमने प्रतिकूलः प्रभावः न भवेत्। सः संवादं कूटनीतिं च तथा सुरक्षितं निर्बाधं च सामुद्रिक व्यापारं प्रति भारतस्य दृष्टिकोणं पुनः प्रतिपादितम्। ईरान संघर्षस्य विषये श्रीजयशंकरः अवदत् यत् वैश्विक ऊर्जा मूल्यानि स्थापयितुं निर्बाध व्यापारं सुनिश्चेतुं च भारतस्य संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः च समानानि हितानि सन्ति। मार्को रूबियो उक्तवान् यत् सहभागितायाः रणनीतिक पक्षं महत्वपूर्णं मन्यमानः भारतं विश्वे संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य प्रमुखतमेषु सहभागिषु अन्यतमः अस्ति। सः अवदत् यत् उभौ देशौ आतंकवादस्य कारणेन दुःखम् अनुभूतवन्तौ। भारतम् अमेरिका च तेषु सर्वेषु प्रमुखविषयेषु रणनीतिकरूपेण एकमतौ स्तः, ये नूतन शताब्दीं परिभाषयिष्यन्ति। अमेरिका देशस्य विदेशमन्त्री मार्को रूबियो चतुर्दिवसीयायाः यात्रायाः कृते ह्यः भारतमागतः। सः अस्य मासस्य षड्विंशति दिनांके आयोक्ष्यमाणायां क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टी दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा इत्येषः फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने महति विजयम् अवाप्नोत्। श्री पांडा 9,000 लक्ष्यमतैः विजितवान्। भारतीय साम्यवादी दलस्य मार्क्सवादी दलस्य शम्भुनाथ कुर्मी इत्येषः द्वितीय स्थाने आसीत्। तदनन्तरं कांग्रेस दलस्य अब्दुल रजाक मोल्लाः आसीत्। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी जहांगीर खानः चतुर्थ स्थाने आसीत्।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप

0: दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Khurana. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: U.S. Secretary of State Marco Rubio strongly underscored the strategic dimension of the partnership, describing India as one of the United States' most important partners in the world. Mr. Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting, which will be held on 26th of this month. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Dibangshu Panda has registered a landslide victory in the Trinamool Congress Baston Falta Assembly constituency. Mr. Panda won the seat by over 1,09,000 votes. Falta's seat was widely regarded as the stronghold of Trinamool Congress. Communist Party of India Marxist candidate Shambhunath Kurmi finished in second place with over 40,600 votes. Congress candidate Abdul Razak Mola came third, and Trinamool Congress candidate Jahangir Khan was pushed to the fourth position with over 7,700 votes. Election Commission had ordered a repoll in Falta following allegations of large-scale malpractice during the polling of the West Bengal Assembly constituency elections. The repolling was held on 21st of this month. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with the Ministry of Home Affairs MHA guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. The directive instructs the authorities to act as per the MHA framework on deportation and repatriation procedures for Bangladeshi nationals and Rohingyas found residing illegally in India. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology Madras and IIT Kanpur to assist the Central Board of Secondary Education, that is CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. This decision has been taken in view of the developments and concerns raised by the students and parents regarding the CBSE post-result services portal. A four-member medical team from the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Delhi, today conducted second autopsy of the former model-turned-actor Tushar Sharma in Bhopal. The post-mortem lasted nearly 3 hours under tight security arrangements. After completion of legal formalities, the body was handed over to the family and the last rites were performed at the Bhadbada Crematorium in Bhopal. At the Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, clinching 2 silver and 1 bronze medal in the women's freestyle events in Vietnam's Da Nang today. In the 50kg category, Sweetie won silver after going down against local favourite Ngo Linh Do 7-5 defeat in the gold medal match. And in IPL cricket, Rajasthan Royals have set a target of 206 runs against hosts Mumbai Indians at Wankhede Stadium. In reply, Mumbai Indians were 137 for 5 in 13.3 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
4: Batori hoite moi, Dolly Debi. Etiar pratham batori khomu hoise. বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডক্টৰ এ জয়শংকৰ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্ক ৰুবিঅ আজি নতুন দিল্লীত বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনাত মিলিত হয়। পশ্চিমবংগৰ ফাল্টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাংশু পাণ্ডা বিপুল ভোটত জয়ী হৈছে। বাংলাদেশত বিগত 24 ঘণ্টাত সৰুৱাই সদৃশ ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 16 লৈ বৃদ্ধি হৈছে। ভিয়েটনামত অনুষ্ঠিত 23 বছৰ অনুৰ্ধৰ এছিয়ান মল্লযুঁজ চেম্পিয়নশ্বিপৰ মহিলাৰ ফ্ৰীষ্টাইল শাখাত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে দুটা ৰূপ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। আৰু আই পি এল

0: ভজন অনুষ্ঠানটির ইমানতে অন্ত পড়িল। এ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 8:45 সমাচাৰ সন্ধিয়া, 9 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालु नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपके साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: 40 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिमबेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy, trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to

0: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এতিয়া দেওবৰীয়া নৈশ সংগীতানুষ্ঠান দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांत दे रॉय।
2: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Hauroshankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hauroshankar Bhattacharya moved to Bombay, present day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hauroshankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Zafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hauroshankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hauroshankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
1: पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
2: पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। बिगिनिंग विद आलाप एंड जोर, द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal followed by madhyalaya teen tal.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग दरबारी ऑन द सितार बाई पंडित हरशंकर भट्टाचार्य। He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Teen Taal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा के